FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरवी चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की नौवीं तिथि, तदनुसार 30 मई 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने वाले हैं। हमारी आज की सभा अब प्रारंभ होती है।

FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय।

दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का प्रसारण किया जाएगा सुबह 9:10 पर। उसके बाद होगा कार्यक्रम वंदना। साजों पर धुन, फिल्मी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:40 पर। गाने नए तराने नए, जी हाँ, ये सुनिए कार्यक्रम 10:30 पर।

युवाणी कार्यक्रम में सुनिए सेगमेंट फोन करें गीत सुने। इसके बाद होगा 5:30 पर कार्यक्रम पणिहारी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए। शाम 6:05। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी शाम 6:45 पर, और शाम 7:30 का समय रहेगा फिल्म संगीत का। रात 8 बजे सुनिए फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश चिरमी। जी हाँ, लोक संगीत का ये कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर, और रात 9 बजे सुनिए दर्द भरे गीत।

0: तो श्रोताओं, ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया जाएगा।
1: जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सरकार ने स्पष्ट किया, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी स्टॉक संरक्षित करने के निर्देश दिए। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हुआ। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित। मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों ने किया श्रमदान। और मौसम में आए बदलाव के बाद पूर्वी उत्तरी जिलों में प्रचंड गर्मी से मिली राहत। अगले 2 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
1: इस बीच 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ भारतीय वाणिज्य जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और इसके 3 जून तक स्वदेश पहुंचने की उम्मीद है। इधर पचपदरा एचपीसीएल रिफाइनरी में बीते महीने संयंत्र में आग के बाद रुकी हुई गतिविधियों और कार्यों की प्रगति को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने एचपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। रिफाइनरी से आगामी 1 जून से कमीशनिंग गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी भी अगले कुछ सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कल जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़ों के अनुसार देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हो गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों को लगे टीकों का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 2 गुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने विद्यार्थियों को किसी भी जानकारी के लिए CBSE की टेली परामर्श हेल्पलाइन पर संपर्क करने की सलाह दी है। इधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। 12वीं का परिणाम 71.65% और 10वीं कक्षा का परिणाम 64.69% रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत इन दिनों कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हुए अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई और पेयजल संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा श्रमदान के साथ जागरूकता आयोजन तथा जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रभारी मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभियान के तहत कल जयपुर के नींदड़ वन क्षेत्र में श्रमदान किया। उन्होंने पक्षियों के लिए परिंडे लगाए और इको ट्रेल का लोकार्पण किया। इधर जल भवन परिसर में जल संरक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्मिकों ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए और जल के सदुपयोग का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। बालोतरा के रेवाड़ा जैतमाल अमृत सरोवर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री के विश्नोई ने श्रमदान किया। चित्तौड़गढ़ में प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने जिलाधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई हिस्सों में कल देर शाम मौसम में अचानक बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर सहित 8 शहरों में दोपहर बाद आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। इस दौरान राजधानी जयपुर सहित आसपास के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के अनुसार भीषण गर्मी के बीच जयपुर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, अलवर और झुंझुनू जिलों में वर्षा हुई। झुंझुनू जिले के कई इलाकों में अंधड़ आया। इस दौरान आसमान में धूल का गुबार छा गया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में देर शाम मौसम का मिजाज बदला और धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश ने लोगों को तेज गर्मी से राहत दी। धौलपुर, भरतपुर, दौसा सहित पूर्वी जिलों में भी मौसम के बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली। अजमेर में दिन भर तेज धूप के बाद देर शाम मौसम ने करवट बदली और आंधी बिजली की गतिविधियों के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। बेमौसम की बरसात से जिले में कई स्थानों पर पेड़ों के गिरने और बिजली के पोल उखड़ने की खबर है। हाड़ौती क्षेत्र में भी आंधी बारिश की गतिविधियां हुई, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। नागौर और आसपास के इलाकों में भी देर रात तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ निजात दिलाई। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई।
3: नागौर जिले में शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश ने लोगों को नौतपा में गर्मी से राहत दी। वहीं जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। दिन भर उमस और गर्मी से परेशान लोगों को देर रात चली तेज आंधी और बरसात से राहत मिली। बारिश के दौरान शहर के कई निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया। जिले के असावरी, तौसर सहित जिला मुख्यालय के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नींबू के आकार के ओले गिरे। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
1: मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज और कल जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभागों में बारिश के साथ मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। दूसरी ओर प्रदेश के पश्चिमी और सरहदी जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान भीषण गर्मी की स्थिति बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट के मौजूदा संस्करण में राजस्थान रॉयल्स का सफर समाप्त हो गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन गुजरात टाइटंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 219 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता का फाइनल कल गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने स्पष्ट किया, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी स्टॉक संरक्षित करने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित, मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों ने किया श्रमदान। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की, देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हुआ। और मौसम में आए बदलाव के बाद पूर्वी उत्तरी जिलों में प्रचंड गर्मी से मिली राहत, अगले 2 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस। 111

अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्यावासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुरवासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का ये पहला भजन हरिओम शरण की आवाज़ में।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: कार्यक्रम का ये आखिरी भजन अनूप जलोटा का गाया हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम साजों पर धुन। कार्यक्रम का ये पहला वाद्य संगीत है फिल्म जॉनी मेरा नाम से।

श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगली वाद्य धुन देश मेरे, और इसमें कलाकार हैं अरिजीत सिंह।

कार्यक्रम का ये अगला गीत है, वाद्य गीत है, फिल्म यादों की बारात से चुरा लिया है तुमने, सैक्सोफोन पर अभिजीत सैक्स।

कार्यक्रम का अगला वाद्य गीत है फिल्म बॉबी से, सैक्सोफोन पर इसे बनाया है अभिजीत ने।

साजों पर धुन पे अभी आपने सुना फिल्म बॉबी का गीत मैं शायर तो नहीं। ये वाद्य गीत पर सैक्सोफोन पर कलाकार थे अभिजीत। एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने पुराने ज़माने के। कार्यक्रम का ये पहला गीत है फिल्म गोपी किशन से कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गूंज फिल्म का ये गीत सुनते हैं बिंजू अली और हेमा सरदेसाई की आवाज़ में।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: ये हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार फिल्म गुलामी में।

यह है कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिल्म घराना से सुरेश वाडकर और मोहम्मद अजीज की आवाजों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के, एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए तराने नए। कार्यक्रम का ये पहला गीत है फिल्म मैं तेरा हीरो से, और इसमें आवाज़ है अरिजीत सिंह की।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये हैं अरिजीत सिंह और अमित मिश्रा फिल्म जग्गा जासूस में।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagaur@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagaur@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

श्रोता हूँ, गुंडे फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, विशाल ददनानी के और नीति मोहन की आवाज़ में है। और ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिल्म डिशूम से जोनीता गांधी और अमित मिश्रा की आवाज़ में है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए तराने नए, एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 015-82-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है मन चित्रपट संगीत। अब आपको सुनवाते हैं एग्रीमेंट फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गुलशन बावरा के बोल, संगीत है बप्पी लाहिरी का।

2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की

0: मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया खयाम ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी आपने, थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: दोस्तों नमस्कार, आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व तंबाकू दिवस पर आइए सुनते हैं DEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के मैटिनी शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं 31 मई ये जो दिन है, इस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। और तंबाकू विरोध क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए, सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल जी को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू।
2: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लत है तंबाकू की, ये जो नशा होता है, ये लत के अलावा भी तंबाकू का कोई इस्तेमाल होता है, वो किस तरह से होता है?
3: जी एक्चुअली ह्यूमन ने तंबाकू का जो सेवन करने से पहले उसको कोई अलग तरीके से यूज करते थे।
2: हाँ हा।
3: जैसे कि हमारा देश खेती प्रधान देश है
2: जी, जी।
3: तो वहाँ पे खेती हमारा पूरा डिपेंडेंसी रहता है।
2: हाँ।
3: तो खेती को जो दो तीन चीजें से जो खतरा है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स
2: हाँ।
3: या बड़े जानवर वगैरह, इनसे खतरा रहता था, तो उनके खेती के जो बॉर्डर पे ये तंबाकू के प्लांट्स लगाए जाते थे।
2: अच्छा।
3: और उनकी वो स्मेल से जो वाइल्ड एनिमल्स वो दूर चले जाते थे। दूसरा था कि खेती को दूसरा जो प्रॉब्लम था वो चूहे से, तो चूहे खेती खराब कर देते थे। तो अभी आज भी की तारीख में भी जो तंबाकू के जो लीव्स रहते हैं
2: जी जी,
3: वो जो बड़े रहते थे वो सूखने के बाद उसको गर्म करके,
2: अच्छा गर्म करके
3: उसको आग लगा के उसको चूहे के जो अंडरग्राउंड जो उनके
2: बिल होते हैं,
3: बिल होते हैं हाँ। उसमें डाल देते, चूहे भाग जाते या मर जाते थे।
2: अच्छा, अच्छा।
3: आज की तारीख में भी हमारे जो गाड़ी
2: है ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है,
3: इवन सिटी में भी,
2: सिटी में
3: जो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन चूहे गाड़ी के जो वायर
2: कुतर जाते हैं,
3: तो उसको रोकने के लिए भी तंबाकू डाल देते थे उससे। तो उसके अलावा जो तंबाकू का जो पान रहते हैं उसको सूखने के बाद उसका पाउडर करते, उसको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड करके भी यूज होता था। जैसे इंसेक्ट्स है जो खेत को या धान को खराब न कर दे। सो ये कुछ तरीके थे जो अदर देन सेवन हम इंसान इसको यूज करते थे। तो ये मुझे यहाँ पे कहना है कि तंबाकू से किसी को भी सेफ नहीं है, सब खतरे में। अगर वो जीव छोटा है तो जल्दी मरेगा, अगर बड़ा है स्लोली स्लोली लेकिन मरेगा जरूर। तो तंबाकू के लिए कहा जाता है कि तंबाकू के जो सेवन करने वाले में से 50% लोग को तंबाकू मार ही डालता है। तो ये मैं श्रोताओं को मैं चाहता हूँ कि बात ध्यान से सुने और अपने दिमाग में उसको हमेशा के लिए स्थापित कर दे।
2: जी जी जी, ये तो बस एक पेस्टिसाइड की तरह इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो केवल उतनी बात अच्छी है तंबाकू की, ये कह सकते हैं बस,
3: बाकी
2: कुछ नहीं। चलिए एक और आपसे बात जाननी थी कि आप BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और 2014 से आपने एक मुहिम चलाई थी तंबाकू विरोधी, क्योंकि

0: हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन में जितने लोग काम करते हैं, खासतौर से जो ड्राइवर्स होते हैं बस के और ट्रकों के ड्राइवर्स होते हैं, इन लोगों में ज्यादा लत होती है तंबाकू की।
1: यस यस
0: तो आपने जो मुहिम चलाई है इसके विरोध में, तो उसके 12 साल हो गए, क्या फायदे आपको नजर आए?
1: या तो मैं श्रोताओं को बताऊं कि तंबाकू में 7,000 अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं,
0: ओ, सात
1: रसायन,
0: हजार
1: 7,000।
0: रसायन, ओ
1: जब कोई भी उसको कंज्यूम करता है तो वो शरीर में जाके अलग अलग बीमारियां करते हैं, जैसे कि सिंपल हार्ट बीट्स बढ़ जाती है,
0: जी
1: ब्लड प्रेशर बढ़ता है,
0: हाँ
1: हार्ट
0: हाँ
1: अटैक आ सकता है, देन लकवा मार सकता है, अपने जो बोन्स है वो वीक
0: जी
1: हो जाते हैं,
0: ओहो
1: और तंबाकू खाने वाले लोगों को बैक पेन या शोल्डर पेन या फ्रैक्चर के भी प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा तंबाकू की वजह से टीबी सरी की बीमारियां होती है, और
0: ओ
1: सबसे डेंजर जैसे कि कैंसर,
0: कैंसर।
1: पर्टिकुलरली मुंह का कैंसर। तो ये सब बीमारी की वजह से हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज जो कर्मचारी उसकी लत के वजह से पीड़ित थे, और
0: जी
1: उसके वजह से हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन भी कम हो रहा था, बिकॉज बीमारी की वजह से वो काम पे नहीं आ सकते थे। तो हमने ये सब चीज़ को देख के हमने 2014 में तंबाकू मुक्त बेस्ट ये अभियान शुरू किया, और
0: तंबाकू
1: हमने
0: मुक्त बेस्ट,
1: बेस्ट
0: अच्छा।
1: और आज तक उसको हमने कंटिन्यू किया है। तो 12 साल के आज ये अभियान को हो गए,
0: जी जी
1: तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये 12 साल में 5,000 हमारे कर्मचारी ने तंबाकू की व्यसन परमानेंटली छोड़ दिया है।
0: वाह।
1: उसके अलावा एक जो सर्वे है उसको हम गेट्स बोलते हैं, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे,
0: अच्छा।
1: उसके मुताबिक कि सरकार अगर 100 रुपीज टैक्स लेती है तंबाकू के ऊपर, तो सामने 816 रुपया का हमें अतिरिक्त भार हमें भुगतना पड़ता है। वो
0: ओहो।
1: जो भार है मेनली तंबाकू की वजह से जो बीमारियां होती है उसके
0: जी
1: ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा जो बीमारी की वजह से लोग काम पे नहीं जाते या प्रोडक्टिविटी लॉस के हिसाब से
0: जी
1: ये नुकसान। तो 12 साल में हमने देखा है कि बीमारियां कम हो गई, उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा कम हो गया, बीमारियां कम हो गई इसलिए सिकनेस एब्सेंटिज्म हमारे कम हो गया, और इसके
0: अच्छा
1: वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और रेवेन्यू भी बढ़ गया, और साथ साथ में बीमारियां कम हुई है तो जो उसकी वजह से मॉर्टेलिटी थी
0: जी
1: जो डेथ वो भी हमारे इधर कम हो गई है, कैंसर के प्रमाण हमारे उधर कम हो गए। तो लोगों में एक अच्छी भावनाएं तैयार हुई है तंबाकू के विरुद्ध में। तो ये बीमारियां कम होने से ये जो लोग ठीक हो रहे हैं या जो बीमार बीमार कम पड़ रहे हैं,
0: जी
1: तो ये नोटिफाई किया गया और हमारी जो अभियान को नेशनली और इंटरनेशनल भी रिकग्निशन मिला है, एक्नोलेज किया गया, अवार्ड भी मिला है।
0: क्या बात है।
1: तो ये तो मैं चाहता हूँ कि पूरी भारत में ऐसे अभियान अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में
0: चलाए जाएं,
1: चलाया जाए, जो
0: क्या बात है।
1: लोग अच्छे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े
0: निश्चित रूप
1: हमारी।
0: से आप सभी, आप और आपकी पूरी टीम जो
1: हाँ
0: ये मुहिम चला रही है, अभियान चला रहे हैं, आप
1: यस
0: इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं।
1: यस थैंक यू
0: पुरस्कार भी आपको मिल चुका है
1: यस
0: और काफी उपलब्धियां रही इस
1: यस
0: अभियान के। बेसिक एक बहुत ही सवाल ये है कि लोग क्यों खाते हैं तंबाकू, क्या होता होगा, ये नशे की शुरुआत कैसी होती है, और वो खाने के बाद क्या उन्हें महसूस होता होगा कि वो फिर वो बार बार उसे खाने लग जाते हैं।
1: बेसिकली वो तंबाकू खुद से तो कोई खाता नहीं है,
0: जी
1: मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि पीयर प्रेशर, स्कूल कॉलेज के जमाने से दोस्त खा रहा है,
0: अच्छा
1: कलीग खा रहे हैं, ले लेना ले
0: अच्छा
1: लेना, तो छोटी
0: ओहो
1: छोटी शुरुआत छोटे से होती है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक रीजन ऐसा है, जब तंबाकू का सेवन किया जाता है
0: जी
1: आइदर स्मोक से या स्मोकलेस से, तो अपने ब्रेन में एक केमिकल्स जो है
0: जी
1: वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो केमिकल का नाम है डोपामिन,
0: ओके
1: और डोपामिन जो कहते हैं इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी
0: हाँ
1: बोलते हैं,
0: जी
1: वो जब डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ता है तो लोग स्ट्रेस भी महसूस फील करते हैं,
0: हाँ हाँ
1: उसको खुशी महसूस करते हैं, और सिंपल भाषा में बोले तो किक आती है उनको,
0: ओ
1: और किक के वजह से
0: हाँ
1: लोग ये पर्टिकुलर ड्राइवर्स ये
0: हाँ
1: किक के वजह से ये तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये जो देन शुरुआत में बहुत कम मात्रा में तंबाकू की सेवन, बहुत कम मात्रा में डोपामिन लेवल बढ़ता है,
0: अच्छा
1: लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे आगे ये लत बढ़ती है तब वो डोपामिन लेवल बढ़ता है, तब तंबाकू का लेवल कंजम्पशन की मात्रा भी बढ़ जाती है,
0: अच्छा
1: उसको कहते हैं कि निकोटिन रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर्स
0: हाँ
1: वो जो है
0: हाँ
1: वो रजिस्टर हो जाते हैं, तब थोड़ा भी डोपामिन बढ़ने के लिए ज्यादा मात्रा तंबाकू की कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है। तो ये विशेष साइकिल तैयार होती है।
0: यानी पहले 1 ग्राम खाने पर भी जो खुशी मिलती थी,
1: हाँ,
0: वो 10 ग्राम खाने के बाद भी नहीं मिलती,
1: नहीं मिलती है। आगे
0: और फिर वो मात्रा बढ़ती जाती
1: बढ़ते बाद, इसलिए वो उसकी लत लगती जाती है और पेशेंट उसके पूरी अधीन हो जाता है, उसकी पूरी डिपेंडेंस तैयार हो जाती है, देन वो बीमारियां शुरू होती है।
0: अच्छा, फिर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बार लत लग जाए तो फिर वो

0: कौन कौन सी बीमारियां? बहुत लंबी लिस्ट है वो
1: यस,
0: बीमारी।
1: बहुत बड़ी लिस्ट है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि कैंसर, कैंसर ठीक है, होता है, 100%
0: हाँ
1: होता है
0: हाँ
1: वो, लेकिन उसको टाइम लगता है।
0: जी
1: लेकिन उससे पहले जो होते हैं कि
0: हाँ
1: मैंने पहले बताया कि पहला तो जब तंबाकू खाते हैं तो
0: जी
1: पहला हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है और कोई वो नोटिस नहीं करता है।
0: हाँ हाँ
1: हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, देन ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। देन ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है, देन डेफिनेटली वो हार्ट पे उसकी असर होने लगती है, तो देन हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाती है। देन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पैरालिसिस,
0: पैरालिसिस होता
1: उसके
0: है।
1: भी जब तंबाकू कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो खाने की जो पाचन शक्ति है वो पुअर हो जाती है, और उसके
0: अच्छा
1: वजह से लोग उनको अपचन समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की दिक्कत होती है। जब ये अपचन होता है तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट विटामिन या
0: हाँ
1: कैल्शियम मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होने चाहिए वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और उसके वजह से पर्टिकुलरली कैल्शियम जो बोलते हैं
0: डॉक्टर साहब, आप तो बता रहे हैं तंबाकू खाने का ये असर है,
1: ये,
0: मगर
1: लेकिन ये
0: कई
1: साइड
0: लोगों को
1: ये,
0: देखा गया है
1: हाँ
0: कि वो जब तक वो तंबाकू नहीं खा लेते सुबह सुबह चाय पीने के बाद, या सिगरेट नहीं पी लेते, तब तक उन्हें हाजत नहीं आती और वो टॉयलेट नहीं जाते।
1: वो एक मिथ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स मिथ, इज अ मिथ। जस्ट अपचन होता है तो कैल्शियम, सबसे बड़ा कैल्शियम का प्रॉब्लम शुरू होता है, और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, इसलिए वजह से बेसिकली हड्डियां और मसल्स में कैल्शियम की बहुत नीड रहती है, जरूरत रहती है,
0: बिल्कुल,
1: तो ये मसल्स एंड हड्डियां भी वीक हो जाती है, और ऐसे
0: बोन
1: लोग
0: डेंसिटी कम हो
1: नहीं,
0: जाती है।
1: बोन डेंसिटी कम हो जाए, तो ऐसे
0: अच्छा
1: ऐसे जो तंबाकू जो खाने वाले लोगों में बैक पेन, मसल्स पेन और फ्रैक्चर की मात्रा भी ज्यादा रहती है। देन
0: अच्छा
1: तंबाकू खाने की वजह से हमारी जो रोग प्रतिरक शक्ति है, इम्यूनिटी बोलते हैं,
0: जी
1: वो
0: जी
1: कम हो जाती है। और उससे अलावा लोग ड्यूटी पे रहते हैं तो लंच या डिनर या स्किप करने के लिए भी लोग
0: अच्छा
1: तंबाकू खाते,
0: ओ हो
1: तो ये सब की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके वजह से जैसे कि जो क्षय रोग या टीबी शरीर की बीमारी का उनको ज्यादा खतरा रहता है,
0: जी
1: और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द एंड या नॉट द लीस्ट, ये कैंसर की बीमारी।
0: जी जी
1: अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि तंबाकू को सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर होता है, और भारत देश पूरे विश्व में
0: जी
1: तंबाकू की वजह से होने वाले मुंह
0: कैंसर के हम
1: के कैंसर के प्रथम नंबर पे आता है,
0: ओ हो
1: और ये कलेक्टिवली जो भी मैंने बीमारियां बोली उसके वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोग की मृत्यु होती है। तो ये श्रोताओं को जानना बहुत जरूरी है,
0: ये बहुत दर्दनाक
1: दर्दनाक चीज है। मैं
0: मगर
1: तो,
0: सत्य है।
1: लेकिन ये सत्य है,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये
0: जी
1: मैं नहीं बोल रहा हूं,
0: हाँ
1: ये ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के रिपोर्ट में लिखा है ये।
0: जी जी जी हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि तंबाकू खाने से डायबिटीज होता है, मधुमेह।
1: यस, इस पे थोड़ा बाहर दूंगा
0: जी जी
1: कि पहला तो हम समझ लेते कि पूरी दुनिया भर में
0: हाँ
1: दो देश में सबसे ज्यादा तंबाकू प्रोडक्शन होता है, उसका कंज्यूम भी होता है,
0: हाँ
1: वो है, एक है चीन और दूसरा नंबर पे हमारा भारत देश है,
0: अच्छा
1: और दोनों देश में ही सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है, मधुमेह के पेशेंट है।
0: ओ
1: तो ये
0: अच्छा
1: इनडायरेक्टली कोरिलेशन है
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: तंबाकू जैसे डायबिटीज हो सकती है। आज की तारीख में देखें तो पूरी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं, पहले
0: जी
1: 2 साल पहले चाइना में था, अभी भारत में हो गया, और दोनों में ज्यादा ही कंजम्पशन होता है। जैसे मैंने बताया कि तंबाकू में 7,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रहते हैं, वो कंज्यूम करने के बाद हमारे जो डायबिटीज का जो मेन जो कंट्रोल मैकेनिज्म है इंसुलिन,
0: जी।
1: ये जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को और इंसुलिन के फंक्शन को ये तंबाकू ऑल्टर करता है,
0: अच्छा
1: और बहुत सारी रीजंस है, और इसके वजह से शुगर कंट्रोल मैकेनिज्म हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है।
0: अच्छा
1: अगर आप WHO की साइट पे जाओगे और डायबिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मांगोगे तो
0: जी
1: उसके
0: जी
1: जो 5 प्रमुख कारण है उसमें 5वां कारण है तंबाकू का व्यसन।
0: अच्छा
1: तो लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि तंबाकू वजह डायबिटीज भी होती है।
0: ओहो, मगर जरूरी नहीं कि डायबिटीज है तो उसको तंबाकू की लत होगी,
1: नॉट नेसेसरी, बट तंबाकू खाने वालों को रिस्क ज्यादा रहती
0: इसकी
1: है,
0: रिस्क है, तो डायबिटीज हो सकता है
1: यस
0: उसे।
1: हो सकता है, और वो डायबिटीज मतलब वो बहुत कड़वी बीमारी है।
0: जी। तंबाकू अगर कोई किसी को अगर उसका नशा है, लत है, और वो छोड़ना चाहे, तो निश्चित रूप से बहुत उसके फायदे उसको मिलेंगे,
1: यस यस
0: मगर उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते होंगे।
1: यस
0: तो हमें दोनों बातें बताइए,
1: या
0: छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं,
1: यस
0: कैसे होते हैं,
1: यस
0: और
1: यस
0: एक बार वो छोड़ दे, निश्चय कर ले, अपना निर्धार पक्का हो जाए उसका कि छोड़ना है, तो उसके क्या-क्या फायदे उसे
1: यस
0: होने वाले हैं?
1: तो पहला हम उसके फायदे के बारे में बोलेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जब तंबाकू अगर सपोज वो सिरे हर 1 घंटे में खाता है,
0: जी
1: या किसी बहुत बार तो वो जब नींद से सुबह में उठता है तो अब कितने समय में उसको तंबाकू की जरूरत पड़ती है, वो एक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फैक्टर है,
0: अच्छा
1: उसकी उसकी लत के बारे में हमें मालूम पड़ता है कि
0: हाँ
1: उठने के बाद कितने समय के बाद उसको तंबाकू खाने की जरूरत पड़ती तो

0: जब तंबाकू उस समय पे नहीं खाया तो पहला तो उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहती है,
1: अच्छा,
0: वो बहुत जरूरी है
1: बहुत
0: हार्ट
1: जरूरी
0: हेल्थ के
1: है,
0: लिए, हृदय
1: बेशक, बहुत जरूरी
0: की स्वास्थ्य के लिए उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है,
1: हाँ
0: तो वो नॉर्मल रहने लगती है।
1: जी,
0: देन उसके बाद ब्लड प्रेशर, जो इसलिए अब हम जब भी एज अ डॉक्टर हम जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं
1: हाँ
0: तब हम उसको पूछते हैं अगर तंबाकू आप एडिक्ट हो तो आधे घंटे के बाद ही हम आपका बीपी चेक करेगा अगर आपने, क्योंकि हमें मालूम है वो ज्यादा ही दिखाने वाला है। तो
1: अच्छा,
0: इसलिए तो इनडायरेक्टली जब तंबाकू का लत या एडिक्शन छोड़ते हो तो
1: हाँ,
0: बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है।
1: अरे वाह,
0: तो ये दोनों हार्ट बीट्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता हो तो छोटा का हार्ट अटैक के रिस्क भी कम हो जाते
1: कम हो
0: हैं।
1: जाती है। जी,
0: देन मैंने बताया कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने लगती है, हमारी जो पचन शक्ति है वो
1: वो
0: इम्प्रूव हो
1: सुधरने
0: जाती
1: लगती
0: है,
1: है। हाँ,
0: हमारे हड्डियाँ हमारे मसल्स वो स्ट्रांग होने लगते हैं।
1: वाह,
0: देन आगे जाके छोटा का तंबाकू के जो खाने वाले जो सबसे डेंजर प्रॉब्लम है वो है हाँ कैंसर, उसकी भी
1: जी,
0: रिस्क कम हो
1: उसके
0: जाती
1: रिस्क
0: है।
1: कम हो जाते हैं। हाँ
0: देन डायबिटीज में हमारे पास लोग हैं जिन्हें
1: जी,
0: तंबाकू छोड़ दी है,
1: हाँ
0: उनकी डायबिटीज की गोले भी बंद हो गई क्योंकि शुगर भी नॉर्मल होने लगी है अब इसकी।
1: अच्छा,
0: ऐसे बहुत सारे हमारे पास
1: ओहो,
0: पेशेंट हैं कि
1: हाँ,
0: तंबाकू लत छोड़ने के बाद उनकी डायबिटीज की गोलियां भी बंद हो गई है।
1: क्या बात।
0: तो ये सब उसके फायदे हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसके क्या फायदे हैं छोड़ने के बाद।
1: जी बिल्कुल।
0: तब यस ये जरूरी है कि जब तंबाकू में जो 7,000 केमिकल है उसमें से एक केमिकल का नाम है निकोटीन,
1: जी
0: और
1: जी
0: निकोटीन की वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है और उसकी वजह से उसकी लत लगती है।
1: अच्छा,
0: तो जब तंबाकू सडनली आप छोड़ देते हो, लोग कहते हैं कि हम आज मैं अगर 5 बार खाता हूं तो कल 4 बार खाऊंगा, तीन तीन,
1: हाँ,
0: तो ऐसा कभी नहीं होता। उसको झटके से ही छोड़ना है
1: अच्छा,
0: तो ही फायदा होगा, तो ही उसकी लत छूटेगी। तो जब झटके से छोड़ते हो तब आपको निकोटीन का विड्रोल सिम्टम 100% महसूस होएगा।
1: शरीर जो है अपनी प्रतिक्रिया
0: यस
1: देता है।
0: वो महसूस होगा ही,
1: हाँ,
0: वो जो विड्रोल सिम्टम जैसे कि वो वीकनेस आ जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा,
1: अच्छा,
0: पर्टिकुलर ड्राइवर कंडर को ये बहुत होता था हमारे पास।
1: हाँ,
0: तो ये लेकिन यहाँ पे जरूरी है कितना टाइम तक ये विड्रोल सिम्टम रहता है,
1: अच्छा,
0: वो 2 दिन से ज्यादा 2 हफ्ते चलता है, उसके बाद अपनी बॉडी खुद को
1: नॉर्मल हो
0: एडजस्ट करने
1: जाता है।
0: लगती है,
1: जी,
0: उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
1: तो पूरा शरीर अपने जो है सामान्य स्थिति में आ
0: वो
1: जाता
0: आ
1: है
0: जाता है बस
1: जैसा तंबाकू खाने से पहले
0: पहले
1: था।
0: था वैसा,
1: वाह,
0: बस थोड़े दिन के लिए अपने को सहन करना है, और वो समय अगर निकाल डाला तो वापस कभी तंबाकू खाता
1: देखिए,
0: नहीं
1: ये
0: है।
1: कितनी जरूरी बात है
0: यस
1: हमारे श्रोताओं को, उनमें से किसी को अगर ये लत है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत छोड़ दें,
0: झटके से छोड़ना है
1: झटके से एक
0: बस
1: साथ,
0: बस
1: और उसके बाद तंबाकू
0: दो दिन से
1: के
0: दो
1: बारे में
0: हफ्ते
1: सोचना ही नहीं। दो हफ्ते,
0: बस
1: ज्यादा से ज्यादा दो
0: दो
1: हफ्ते
0: ज्यादा से ज्यादा दो
1: ये
0: हफ्ते
1: लक्षण रहेंगे,
0: बस विड्रोल सिम्टम ज्यादा।
1: विड्रॉल सिम्टम्स,
0: यस
1: और उसके बाद वो सामान्य स्थिति
0: सामान्य
1: में
0: हो
1: आ जाए।
0: जाएगा,
1: क्या
0: अपनी
1: बात,
0: बॉडी अपने आप को रिकवर करती है।
1: वाह वाह। तो फायदे हमने जान लिए। हम तंबाकू की बातें जब होती है तो एक एक्ट है, एक ऐसा नियम है, कुछ वो कानून है, कॉप्टा एक्ट कुछ ऐसा कहते हैं,
0: यस
1: ये क्या होता है, क्या कॉप्टा एक्ट क्या है?
0: सी जैसे तंबाकू की वजह से हमारे पास जैसे सबसे ज्यादा मौतें होती है, खर्चा होता है,
1: जी,
0: 100 रुपए के टैक्स के सामने 816 रुपए का हमें खर्चा हो रहा है। तो ये उसको और कम करने के लिए कुछ कानून बनाया है, उसको
1: अच्छा
0: कोटपा एक्ट बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट,
1: अच्छा कंजम्पशन ऑफ
0: ऑफ
1: टोबैको
0: टोबैको
1: प्रोडक्ट
0: प्रोडक्ट
1: एक्ट,
0: एक्ट,
1: कॉटपा एक्ट।
0: कोटपा एक्ट।
1: अच्छा,
0: उसके अंतर्गत आपको पब्लिक प्लेस में तंबाकू का कोई भी प्रकार का सेवन प्रतिबंध है, इज अ
1: प्रतिबंधित है।
0: पनिशेबल ऑफेंस।
1: जी,
0: देन वो खाके पब्लिक प्लेस में थूकना भी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। देन उसके एडवर्टाइजमेंट
1: जी,
0: जो होती है वो
1: हाँ,
0: भी अलाउड नहीं है आपको कोई भी प्रकार के। सो ये एक एक्ट इसलिए लाया है कि लोग एक दूसरे को देख के जो खाते हैं वो ना खाए
1: जी,
0: और उसकी लत और उसको कम करते जाए हम लोग।
1: जी
0: उसका फायदा हुआ है, कम हुई है,
1: हाँ
0: जो लोग खाने वाले परसेंटेज कम हुआ है,
1: जी,
0: लेकिन जो उसे और हमें आगे लेके जाना है उसको एक और अभी कुछ सरकार ने उसको कड़क किया है कि उसके अंतर्गत वो सरोगेसी ऐड बोलते हैं उसको
1: अच्छा,
0: भी बैन किया है, कि
1: हाँ,
0: कुछ नाम सेम रखते हैं लेकिन कुछ अलग प्रोडक्ट रहता है। एक्स तंबाकू का जो प्रोडक्ट था पहले उसको
1: जी,
0: खाली नाम सेम रखते हैं और प्रोडक्ट कुछ अलग रहते
1: होता
0: हैं,
1: तंबाकू ही है मगर उसको कुछ एक
0: वो
1: नया
0: अलग,
1: नाम और नया रूप दे देते हैं।
0: या तो फिर उसका प्रोडक्ट वो अलग कर देते हैं कि
1: अच्छा,
0: जो पहले वो नाम तंबाकू
1: हाँ
0: के वजह से के लिए यूज होता था अभी वो
1: हाँ
0: तंबाकू की वजह से नहीं होते, कुछ अलग प्रोडक्ट जो नॉर्मली लोग
1: अच्छा अच्छा
0: खाते
1: अच्छा
0: पीते हैं उसके लिए, तो सरोगेट
1: हाँ
0: ऐड बोलते हैं उसको भी बैन किया है।
1: जी
0: तो ये
1: जी
0: इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू का कंजम्पशन कम हो जाए, उसकी वजह से जो

0: बीमारियां कम हो जाए और खर्चे भी
1: जी
0: कम हो जाए।
1: तंबाकू तो नहीं, मगर तंबाकू जैसे और तंबाकू इस्तेमाल करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसी की अभी बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग सीधे सीधे तंबाकू तो नहीं खाते, मगर ऐसे प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं
0: इनडायरेक्ट।
1: इनडायरेक्टली जिससे तंबाकू उनके शरीर में
0: यस
1: जाता है।
0: यस, जैसे अभी बहुत कुछ आ गया है, वो इनहेलेशन आ गया है,
1: हाँ,
0: वो भले सिगरेट नहीं पीते लेकिन कुछ इनहेलेशन
1: ई
0: तरीका,
1: सिगरेट कर
0: ई
1: ई
0: सिगरेट आ
1: सिगरेट
0: गई
1: पी,
0: है,
1: हाँ
0: उसको भी अलाउ नहीं है, वो भी हानिकारक है,
1: जी जी जी
0: उसमें हानिकारक है वो
1: हाँ
0: भी।
1: हाँ तो ये जो तंबाकू ना खाके अगर ये ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं,
0: उसे
1: उन्हें भी उतना ही धोखा है,
0: यस यस
1: उतना ही रिस्क
0: यस
1: है।
0: यस वेरी गुड।
1: जो व्यक्ति तंबाकू नहीं खाता, वो गलती से उसके शरीर में तंबाकू चला जाए, तो पहला रिएक्शन बॉडी का तो ये होता है कि जैसे कभी पान खाते हुए पान में किसी ने हल्का सा
0: हाँ,
1: तंबाकू डाल दिया और वो हमने खा लिया,
0: और दिक्कत
1: तो
0: होती है।
1: तुरंत उल्टियां होने लगती हैं।
0: यस यस यस, और बहुत बार तो जैसे कि
1: और लेकिन जिनको लत लगती है उनको पहली बार ऐसा नहीं होता है।
0: उनको नहीं होता, ये जो आपने बताया
1: हाँ
0: वो सबसे
1: हाँ
0: ज्यादा अफेक्ट करता है, पेसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको, कि
1: हाँ
0: अगर हस्बैंड स्मोक करता है,
1: जी जी
0: उसके वाइफ है या उसके बच्चे हैं, तो
1: हाँ
0: उसमें भी वो धुआं जाता है ना,
1: बिल्कुल
0: वो धुआं
1: हाँ
0: जाता है। देन या घर में कोई तंबाकू खाता है तो उसको देख के बच्चे भी उसके खाने लगते हैं,
1: अच्छा
0: तो ये बहुत जरूरी है। तो पेसिव स्मोकिंग की वजह से इट हैज बीन एस्टेब्लिश कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है,
1: जी
0: जैसे कोई एक फैमिली में एक हस्बैंड स्मोक करता है
1: जी
0: और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसके वो धुआं उसको जाए तो उसके बच्चे को भी खतरा है,
1: जी
0: जो अभी तक दुनिया में आए नहीं है उसको भी खतरा है,
1: उस पर भी
0: तो
1: असर हो रहा है।
0: बहुत खतरा है उसके लिए, सबसे ज्यादा खतरा है उसको, तो
1: जी,
0: द पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको।
1: हाँ
0: ये सिर्फ चीजें लोगों को आई डोंट नो मालूम है, या उसको इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, आई
1: हाँ
0: डोंट नो, बट लोगों को मालूम होना जरूरी है ये बातें।
1: अच्छा, हमने सुना है कि कुछ दवाइयों के तरीके में कुछ तरह के मेडिसिन्स है, उसमें तंबाकू का इस्तेमाल भी होता है।
0: नहीं, आई डोंट थिंक सो,
1: अच्छा,
0: आई डोंट थिंक सो, आई
1: या कुछ
0: डोंट
1: लोगों ने
0: थिंक।
1: कहा कि हमें तो फलां डॉक्टर साहब ने कहा है कि पान में थोड़ा तंबाकू खा लिया करो ताकि आपका पेट अच्छा रहे,
0: नहीं,
1: आपकी पाचन संस्था
0: ये
1: अच्छी।
0: सब मिथ्स है, मिथ्स है, ये
1: अच्छा,
0: मिथ्स है।
1: ऐसा कुछ
0: सी,
1: नहीं,
0: तंबाकू इतनी क्वांटिटी इज हार्मफुल फॉर द बॉडी,
1: बस
0: बस
1: वो।
0: उसको छोड़ना ही है ना, उसको नजदीक जाना ही नहीं उसके, बस
1: हाँ
0: बस।
1: हाँ
0: जैसे मैं शुरुआत में बताया,
1: जी
0: छोटा जीव है जल्दी मरेगा, बड़ा है तो बाद में मरेगा,
1: हाँ मरेगा जरूर।
0: मरेगा जरूर।
1: ओह, तो इस
0: सी,
1: कठोर सत्य
0: दूर
1: को, इस कटु सत्य को जो है हमें
0: जाना,
1: जान लेना चाहिए, हमें
0: एक्सेप्ट करना है हमें।
1: एक्सेप्ट करना है। कोई जादुई मिक्स आपने बनाया है?
0: यस, उसको हमने
1: ये
0: मैजिक,
1: कैसे हुआ, कब
0: यस
1: हुआ,
0: या
1: और इसका क्या आपको परिणाम कैसा देखने को
0: या
1: मिला?
0: उसको हमने नाम दिया मैजिक मिक्स या
1: अच्छा,
0: मैजिक
1: मैजिक
0: चूरन,
1: मिक्स, जादुई चूरन,
0: जादुई चूरन।
1: वाह।
0: जैसे अभी तंबाकू की जो एडिक्ट लोग में, दो प्रकार की एडिक्शन है, एक है साइकोलॉजिकल एडिक्शन जो 90% लोगों में, 10% लोग में ही फिजिकल डिपेंडेंसी है,
1: अच्छा,
0: तो 90% लोग बस उसको वो कलर का चूरन मांगता है और उसको हाथों में घसना है और खाना है, और उसका जो कैनिस्टर है या डब्बी बोले हैं जो महाराष्ट्र में बोलते हैं,
1: हाँ
0: तो वो उसको दिख गई तो उसको लगता है मैंने तंबाकू खा लिया। तो
1: अच्छा,
0: हमने वो बेस को ध्यान में रखते
1: हाँ
0: हमने चूर्ण बनाया है, जिसमें दालचीनी, अजवाइन, जीरा, बड़ी शोभ
1: वाह,
0: और लवंग का इस्तेमाल किया है। जब उसको आप ग्राइंड करोगे
1: हाँ
0: तो हुबहू तंबाकू सरीका ही लगेगा,
1: अच्छा
0: और जो चूने की जगह पे हमने राइस पाउडर यूज करते हैं उसमें,
1: अच्छा
0: तो जब आप उसको हाथ में लेके घसोगे तो फील सेम ही आएगा कि आप तंबाकू
1: हाँ
0: को घिस रहे
1: जो
0: हो।
1: लोग तंबाकू मल के खाते
0: हाँ,
1: हैं।
0: तो उसको कलर भी वैसा ही है इसका
1: हाँ
0: ना।
1: हाँ
0: उसमें साइंस ऐसा है कि
1: जी
0: जो दालचीनी है
1: हाँ
0: इसकी प्रॉपर्टी है कि जो निकोटिन के विड्रोल को और कम करती है,
1: अरे वाह,
0: तो साइंस भी है उसके पीछे।
1: क्या बात है,
0: तो इसके वजह से हमने चूर्ण बनाया, उसका नाम रखा मैजिक मिक्स,
1: मैजिक मिक्स,
0: मैजिक मिक्स।
1: वाह वाह वाह,
0: और वो मैजिक ने सच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उस मैजिक किया है, और
1: हाँ
0: वो खा के बहुत सारे लोगों ने तंबाकू छोड़ दिया है।
1: वाह वाह।
0: तो मैं लोगों को बोलूंगा कि उसकी लिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब में,
1: अच्छा
0: मैजिक मिक्स मेरा नाम डाल के आपको मिल जाए, कैसे बनाना है।
1: हाँ
0: हमने उसको कॉपीराइट किया है, आप कोई भी घर पे बना सकता है और
1: अच्छा
0: उसको यूज करे, और अपनी जब भी तलब लगे
1: हाँ,
0: तंबाकू की जगह उसको खाए।
1: मतलब ये मैजिक मिक्स कोई कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं
0: नो, इट
1: है,
0: इज नॉट कमर्शियल प्रोडक्ट,
1: ये सबके लिए है, सबके फायदे के
0: सबके
1: लिए
0: फायदे
1: है।
0: के लिए हमने उस खाली कॉपीराइट किया है कि उसको कमर्शियल यूज कोई ना करे उसको,
1: अच्छा,
0: तो
1: हाँ,
0: आपके लिए ये आप खाओ, खुद बनाओ,
1: सबके लिए ये मुफ्त है, फ्री है,
0: खुद बनाइए घर पर और खाइए
1: तो ये
0: उसको,
1: फॉर्मूला जो है वो यूट्यूब पे देख करके
0: ये
1: बनाया जा सकता
0: बना।
1: है।
0: और मेन बात उसको खा के थूकना भी नहीं है,
1: हाँ,
0: तो स्वच्छ भारत अभियान को भी हम प्रमोट कर रहे हैं उससे।
1: क्या बात है, वाह वाह,
0: उसके खाने के बाद वो निगलना ही है, क्योंकि वो
1: हाँ
0: निगलने के बाद बहुत सारे बेनिफिट देता है,
1: बिल्कुल
0: सब
1: बिल्कुल,
0: ये अपने गर्म मसाले वो फायदेकारक ही हमारे बॉडी को।
1: हमारे सुनने वालों के बेनिफिट के लिए
0: यस,
1: हम इस मैजिक मिक्स का जो फॉर्मूला है
0: हाँ
1: उसे एक बार दोहराते हैं।
0: हाँ
1: इसमें क्या-क्या चीजें आपने डाली हैं?
0: दालचीनी,
1: दालचीनी,
0: अजवाइन,
1: अजवाइन,
0: जीरा,
1: जीरा,
0: बड़ी शोप, सौप
1: सौंफ,
0: सौप
1: सौंफ, हाँ
0: और एक का

0: लौंग,
1: अच्छा
0: उसको मिक्स करके,
1: लौंग तो एक ही ले रहे हैं मगर बाकी जितनी
0: बाकी इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी,
1: इक्वल क्वांटिटी,
0: इक्वल क्वांटिटी, उसको ग्राइंड करना है मिक्सचर में, मिक्सचर होगा वो हबू तम्बाकू सरीका लगेगा,
1: अच्छा
0: लेकिन उसमें तम्बाकू नहीं है, चूने की जगह पे राइस पाउडर यूज करने का, वो भी चावल का आटा,
1: अच्छा
0: तो ये आप करके उसको सेम कनिस्टर में
1: तम्बाकू मलने की आदत है,
0: ऐसे ही मल के खाओ,
1: मल के जो है अपना पूरा एक्शन कंप्लीट करो,
0: एक्शन कंप्लीट,
1: और उसके बाद चाहे तो उसको होठों में दबा ले थोड़ी देर,
0: या दबा लो
1: उसका जो जूस निकलेगा
0: वो
1: आपके शरीर के लिए फायदेमंद,
0: उसको थूकना भी नहीं है,
1: क्या बात है, बहुत ही जादुई बात है ये तम्बाकू के बारे में, इस लत को छोड़ने के लिए जो है कारगर सिद्ध होगी। तो डॉक्टर साहब अब कार्यक्रम के आखिर में कुछ तम्बाकू छोड़ने के बारे में कुछ पते की बात हो जाए, आप क्या बताना चाहेंगे इस मौके पे?
0: मैं भारत के वासियों को बताना चाहता हूँ कि तंबाकू कभी भी हमें फायदा नहीं करता है, उससे सिर्फ नुकसान नुकसान नुकसान ही होता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक भी नुकसान होता है।
1: जी जी, जी।
0: वो लोगों को मालूम नहीं है, ऐसा सर्वे हुआ है कि अगर आपने तंबाकू की लत छोड़ दी तो आपका जो एक इंडिविजुअल घर की जो आर्थिक परिस्थिति 10% इंप्रूव हो जाती है।
1: क्या बात है, मुझे एक और बात याद आई कि मेरे कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था,
0: हाँ।
1: और वो कृषि बैकग्राउंड से था,
0: हाँ।
1: उसके घर वाले जो है खेती करते थे, तो वो कहता है वो तंबाकू खाया करता था बहुत नियमित रूप से, और वो कहता है मुझे सांप ने अगर काट लिया तो मुझे जहर नहीं चढ़ेगा, तो ये कितना बड़ा मिथ है आप जरा
0: मिथ सी है, सब मिथ सी है,
1: बड़ी गलत,
0: बहुत गलत फहमी है, ये तंबाकू छोड़ना बहुत जरूरी है
1: जी,
0: वो सिर्फ वो इंडिविजुअल को नहीं खाता है, पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है वो। जैसे हमने देखे है, आप किसी को अगर अगर देखना है तो टाटा हॉस्पिटल में जाके एक बार चक्कर मार के आए बस, खाली समझ जाएंगे ये तंबाकू से क्या गड़बड़ होती है।
1: जी जी,
0: लोगों को जिंदा है लेकिन मुंह में खाना नहीं खा सकते, नाक में नलीड से खाना खाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि अपने फैमिली को, अपने देश को स्ट्रांग करने के लिए
1: जी,
0: उसको मजबूत करने के लिए, शारीरिक और मानसिक और आर्थिक मजबूत करने के लिए हमें तंबाकू की लत को छोड़ना ही है।
1: और कोई भी फॉर्म हो तंबाकू का,
0: कोई भी फॉर्म,
1: या तो कच्चा तंबाकू है या वो उसकी पाउडर नसवार
0: नसवाली है, स्मोकिंग है,
1: या स्मोकिंग है,
0: कोई भी प्रकार का
1: तंबाकू,
0: बस उसको छोड़ दो, बस खत्म करो, अपनी फैमिली और अपने देश के लिए उसको छोड़ दो।
1: बहुत ही अच्छी बातें आज तंबाकू विरोध जो है इसके बारे में आपने बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी,
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। तंबाकू की वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोगों की मृत्यु होती है, तंबाकू की वजह से मनुष्य उसकी शारीरिक मानसिक और आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाती है, और उसके वजह से उनकी फैमिली बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। तो मैं आज तंबाकू विरोध दिवस के निमित्त श्रोताओं को अपील करूंगा कि तंबाकू की व्यसन को पूरी तरह छोड़ दे, और झटके से छोड़ दे, और अपने फैमिली को और हमारे देश को मजबूत बनाए। धन्यवाद।

विश्व तंबाकू दिवस पर अभी आप सुन रहे थे VEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर

0: साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूं। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस पहुंची अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आंखें फिल्म का गाना, नितिन रायकवार आदेश और अरुण बख्शी की आवाजों में। नितिन रायकवार के बोल, संगीत है जतिन ललित का।

अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम का, ओ माय गॉड। इस फिल्म का गाना है कैलाश खेर, मीत ब्रदर्स और अनजान की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये है राजा फिल्म का गाना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये हंगामा फिल्म का गाना शान और साधना सरगम की आवाजों में। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: थे जवानी।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना गोलमाल, इस फिल्म का गाना शेखर और स्नेहा पंत की आवाजों में, विशाल दादलानी और कुमार का लिखा हुआ गाना, संगीत है विशाल शेखर का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अतिथि तुम कब जाओगे। इस फिल्म का गाना अनुपम आमोद की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, संगीत है प्रीतम का।

FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। दिन का एक बजने वाला है। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग आज से भारत की 5 दिन की यात्रा पर हैं। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत पहुंचा। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये भारत की पहली यात्रा है। वे आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। वे कल नई दिल्ली में म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। उनका सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति यू मिन आंग की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों के और अधिक मजबूत तथा प्रगाढ़ होने की आशा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी पहले, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में विशेष स्थान रखता है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी देश के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस होंगे। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जो आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल चौहान को आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विदाई समारोह में जनरल चौहान ने कहा कि तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सेवानिवृत्त होना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। 4 दशकों से अधिक की सेवा के बाद जनरल चौहान ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक और उत्कृष्ट बताया। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हुए अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई और पेयजल संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा श्रमदान के साथ जागरूकता आयोजन रखे जा रहे हैं। इसी क्रम में सरहदी जिले जैसलमेर में रिचार्ज शॉफ्ट संरचनाओं का लोकार्पण किया गया। इनके जरिए जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ाई गई। सवाई माधोपुर के बाडूलास में गंभीर नदी पर बने एनीकट पर जल पूजन और पीपल पूजन का आयोजन हुआ। इसी तरह पाली जिले के सादड़ी में ऐतिहासिक प्रतापगढ़ बावड़ी पर भी कार्यक्रम रखा गया। जिले के सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने डायवर्जन चैनल का लोकार्पण किया। इस दौरान निकाली गई प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। वित्तीय सेवा विभाग ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों से संबंधित जानकारी लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह पीएसबीए के सहयोग से विकसित किया गया है। पीएसबीए देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक केंद्रीकृत कंपनी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि पोर्टल वित्तीय प्रणाली से जुड़े ऐसे बैंक खातों, बीमा दावों, शेयरों, लाभांश और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाता है जिनका कोई दावेदार नहीं है। कोटा जिले में पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारी ब्रुसेलोसिस का प्रकोप दिखाई देने पर चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। नगर निगम की बंधा गौशाला और 2 निजी गौशालाओं की 11 गायों में इस रोग की पुष्टि हुई है।

संक्रमित गायों को आइसोलेट किया गया है। नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर खुशाल सोलंकी ने बताया कि इस बीमारी से संक्रमित पशु का दूध पीने और इनके संपर्क में आने वालों में भी इनकी चपेट में आने की आशंका बनी रहती है। सूचना मिलने पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा टीम गठित कर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की ओर से बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान शुरू हुआ। 29 जून तक चलने वाले अभियान के तहत 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी। पाली में सभी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और जिला अस्पताल में अधिक से अधिक बच्चों को दवा पिलाने के इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज 30 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। कल शाम मौसम में अचानक बदलाव के बाद उत्तर पूर्वी जिलों में तेज अंधड़, बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू और करौली सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। राजधानी जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम का ये बदला हुआ मिजाज बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। जी हाँ, शाम का वक्त हो और अगर आपको पता चले कि आपकी पसंद का आलू का बना हुआ कोई बहुत ही मज़ेदार नाश्ता आपके सामने आया है तो आप यही कहेंगे ना कि उनको देखा तो दिल उस पर आ गया है। मदन मोहन का इसमें संगीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों का राजा है और वो हर किसी के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बेफिक्र और रूमानी शाम की याद दिलाती है आज की इबारत। इसे पढ़कर मन में एक चुलबुली और हास्य से भरी तस्वीर उभर रही है जिसमें खुद से बातें करते करते अचानक से शायरी और फिर खाने पीने की चीज़ों जैसे कि ठंडे पानी, समोसे, बर्फी पर आ जाते हैं। ये बोलचाल की भाषा का एक बहुत ही प्यारा और अनूठा मिश्रण है जो कह रहा है कि जीवन की उलझनों को भी हंसी मजाक के चाशनी में डुबोकर आसान बनाया जा सकता है। जिंदगी में चाहे जितनी समस्याएं हो, हंसी मजाक का स्वाद कभी कम नहीं होना चाहिए। अंत में गुजरे हुए उन सुनहरे दिनों की याद इस पूरी इबारत को एक बहुत ही भावुक और प्यारा सा मोड़ दे देती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर रोज हसीन शाम को इतने लू वाली गर्मी है, शाम को ऑफिस से आने के बाद ठंडे ठंडे पानी से दोबारा शावर में नहाना ही पड़ता है, उसके बाद ही आगे की दिनचर्या शुरू हो पाती है और हम थोड़े से रिलैक्स हो पाते हैं। तो चलिए आपके दिल दिमाग को हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा है और ठंडे पानी से नहाने का इसमें जो मजा है वो तो और भी है ही। पति पत्नी और वो इस फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, रविंद्र जैन का संगीत।

आलू से बना हुआ कोई स्वादिष्ट नाश्ता जब आपके घर में बन रहा हो तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, और जब वो सुगंध फैलती है तो ऐसा भी कभी होता होगा ना कि आसपास में आपके कोई पड़ोसी, आपके कोई नाते रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त आपका दरवाजा खटखटाते होंगे और पूछते होंगे, भाई आज क्या बन रहा है। एक साथी लिख रहे हैं, आलू वो सादगी है जो हर स्वाद में रंग भर देता है, इसलिए हर घर की रसोई में उसकी खास जगह होती है। हर सब्जी उसका साथ पाकर और भी स्वादिष्ट हो जाती है। आलू सच में रसोई का राजा है। आलू न दिखावे में बड़ा है न नाम में, लेकिन काम में सबसे बड़ा है। यही उसकी असली पहचान है जो हर मौसम, हर सब्जी और हर थाली में फिट हो जाए, वही असली राजा कहलाता है। आलू, आलू की कहानी सादगी की जीत है, कम में भी सबसे ज्यादा स्वाद देने की कला है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज मैं आलू की टिक्की बना रही हूं। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे बटाटा वड़ा और फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। और एक हमारे साथी जो है उन्होंने हमें अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की शुभकामनाएं दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की खोज दक्षिण अमेरिका में हुई थी और आलू की कहानी वहीं से शुरू हुई थी। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बात चल रही तो आलू के पराठे, समोसे, पकौड़े से लेकर चिप्स, पापड़ तक सभी का स्वाद निराला है। सुबह सुबह आलू के पराठे मिल जाए, दोपहर में आलू की सब्जी और पूरी मिल जाए और शाम को समोसे मिल जाए तो कहना ही क्या। ये सिर्फ आलू ही नहीं, ये हमें सिखाता है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे आलू हर सब्जी में मिलकर इसका स्वाद बढ़ा देता है, वैसे ही हमें जीवन में होना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि हमारा महत्व हमेशा बना रहे। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के बिना भारतीय रसोई अधूरी है। यद्यपि आज आलू भारतीय रसोई का एक अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारतीय मूल की सामग्री नहीं है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू महज एक सब्जी नहीं है, ये एक एहसास है। ये वो निश्चल साथी है जो हर दूसरी सब्जी के साथ अपनी पहचान मिटाकर घुल मिल जाता है। कभी वह गोभी के साथ जुगलबंदी करता है तो कभी मटर के साथ मिलकर एक नया स्वाद रचता है। वह किसी राजा के थाल का हिस्सा भी है और एक गरीब की झोपड़ी में तसल्ली का निवाला भी है। और एक साथी लिख रही है कि मुझे तो पता ही नहीं आज आलू दिवस है, आज अजीब संयोग बना है, आज हमारी श्रीमती जी ने आलू के पराठे बनाए हैं, दही के साथ सेवन कर रहे हैं हम। बहुत धन्यवाद आपका। एक साथी लिख रहे हैं कि बेहद खूबसूरत गीत के साथ शुरुआत की है। वैसे आलू दिवस पर हमारे यहाँ आलू पालक टमाटर की सब्जी बनी है, मुझे आलू बहुत ज्यादा पसंद है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी रेसिपी पर सबसे ज्यादा आता है, कौन सी रेसिपी है जब आप ये कहते हैं कि ये दिल मुझे बता दे कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। भाई भाई फिल्म का गाना, गीता दत्त की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत, अशोक कुमार और श्यामा पर फिल्माया गया गाना।

तो बताया क्या आपने कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी चीज पर आ गया है? बहुत सारे श्रोताओं ने इतनी सारी बातें लिखी है, लिखते हैं कि लाल टमाटर हरे मटर में मंडी चलने की ठानी, आलू भी तैयार हो गया, साथ चली गोभी रानी। मुझे आलू इसलिए पसंद है कि वो सभी के साथ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए सबको आलू भाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज भी लंच में दही वाले आलू बनाए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि उदयपुर जिले में फतेह स्कूल के पास में एक जगह है जहाँ के आलू बड़े बहुत फेमस है। मैं कल परीक्षा देने जा रहा हूँ, जरूर वहाँ के स्वादिष्ट आलू बड़ों का आनंद लूंगा। और एक साथी लिख रहे हैं कि इबारत कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया आपने, आज आलू दिवस पर गीतों का मजा मिलेगा। और लिखा है कि आलू दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, आलू बिना कोई रसोई बन नहीं सकती, ये सभी सब्जियों में मिक्स हो जाता है। चिप्स और पराठा तो आलू के ही स्वादिष्ट होते हैं, खिचड़ी और तहरी में मिलाकर उसका टेस्ट भी बदल दिया जाता है जो सबको पसंद आता है। अब तो मिठाइयों में भी आलू का प्रयोग होने लगा है, समोसा तो बिना आलू के बन ही नहीं सकता, आलू की पकौड़ी तो चटनी के साथ गर्मा गर्म खाने में बड़ा ही मजा आता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, आलू पौधे का भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं होता है। एक साथी ये लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों के राजा है, पर मैं तो कहूंगी रसोई की रानी है। एक माँ जानती है कि बच्चों को कैसे सब्जी खिलाना पड़ती है, आलू के साथ कुछ मिला दो तो खा लेते हैं। और हमारा जो बिहारी खाना है वो तो बिना आलू के पूरा ही नहीं बनता है, दाल भात चोखा लिट्टी चोखा, और अगर आलू नहीं है तो ये व्यंजन अधूरा है। संक्रांति में दही चूड़ा, उसके साथ आलू दम, सफर में जाना है पूरी के साथ आलू की भुजिया, बरसात के दिनों के लिए आलू का सूख होता, अतिथियों के लिए आलू के चिप्स, सर्दियों में आलू के अचार। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आलू सब सब्जियों के साथ घुल मिल जाता है, और अपने यहाँ आलू का रायता बहुत पसंद किया जाता है जो दही के साथ बनाया जाता है। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि अगर ठंडे ठंडे पानी से ही नहाना था तो सूरज को और पास क्यों बुलाना था? बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर इस गाने में अगर आप गौर करेंगे तो एक लाइन आती है कि आलू टमाटर का साग। जी हाँ, जब बहुत भूख लगी हो तो आलू टमाटर का जो साग होता है ना, वो हमारे मन को कितना ललचाता है, ये इसमें दिखाया गया है, इसीलिए हमने इस गाने को चुना है। तो सुनिएगा आप ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू साधारण सा दिखता है लेकिन हर रसोई की जान है, हर मसाले और हर सब्जी के साथ मिलकर स्वाद दो गुना कर देता है, इसलिए उसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। जिस थाली में आलू हो वो थाली अधूरी नहीं लगती, वो हर स्वाद को पूरा करने की ताकत रखता है। आलू की खासियत यही है कि वो खुद में सादा होकर भी हर व्यंजन को खास बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हम, और बैराग फिल्म का गाना आपको सुनवा

कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि रेसिपी कौन सी बनने वाली होती है और क्या बन जाती है, हम कोशिश करते हैं एक नई चीज़ कुछ बनाने की और कुछ और बनाने का सोचते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाता, कुछ और ही बन जाता है। हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा स्वादिष्ट, और कभी कभी वो स्वाद जिसकी हम उम्मीद रखते हैं वो कभी नहीं आता है, तो भी मन बड़ा खिन्न हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू को ध्यान से खाओ, क्योंकि आलू बाहर से ठंडा होता है लेकिन अंदर से गर्म होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू ज़्यादा खाओगे तो आलू जैसे हो जाओगे, और लौकी खाओगे तो लौकी जैसे बनोगे। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सचमुच

नहीं हो गया। मैंने आज आलू के पराठे ही बनाए, पति देव को बहुत पसंद है, मक्खन और अचार के साथ। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की लौंज एक प्रकार की मिठाई है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सर्दियों में नए आलू को मिट्टी के हांडी में जिसमें आग तपती है उसमें रख देते हैं, उस पके आलू खाने का अलग ही आनंद और स्वाद है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई इसके भी दिन बहुरे हैं और वो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के भल्ले भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, दही भल्ले की तरह ही। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू और दाल की बड़ी की चटपटी भाजी बहुत पसंद है। और तो और मैंने आपका कार्यक्रम सुनकर श्रीमती जी से वही भाजी का आग्रह किया और उन्होंने भोजन बन जाने के बाद भी मेरी फरमाइश के अनुरूप मुझे भाजी बनाकर वो दे रही है। एक साथी लिख रहे कि किसी पड़ोसी ने तो दरवाजा नहीं खटखटाया, पर हाँ कई बार हमारी बेटी और उसकी सहेलियों ने जरूर कहा कि बाहर से अंदर आते ही कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आलू बेसन की, क्योंकि हम जब सैंडविच के लिए मसाला तैयार करते हैं तो उसमें अहम भूमिका तो आलू की होती है, पर उस पर और भी कई चीजें डाली जाती है। सबसे तेल, फिर उसमें थोड़ा जीरा, सौंफ और खड़ा धनिया, और फिर थोड़ा सा बेसन डालकर भुनना, फिर अमचूर या नींबू डालकर उसमें उबले आलू को डालना, और फिर कहीं जाकर इस मसाले को ब्रेड में डालकर सेकना, तब जाकर सबको खिलाना, और फिर उसके बाद सबकी तारीफ पाना। एक साथी लिख रहे हैं कि बंगाल का आलू, बिहार और मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें आलू से बनाई जाती है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल थोड़ा मौसम का मिजाज ठंडा है, बारिश हो जाने से प्याज की पकौड़ी, समोसे और कुछ गर्म नाश्ता खाने का मन करता है। मौसम के साथ जुबान का मिजाज भी बदल जाता है तो अच्छा खाने का मन करता है। चाहे जितनी भी गर्मी हो पर बाजारों में चाट के ठेलों पर खूब भीड़ होती है, आलू की टिक्की समोसे बहुत खाए जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आलू का जो आकार होता है गोल गोल होता है, लेकिन एक लंबे आकार की भी चीज होती है और उसके बारे में भी बहुत सारी बातें इस गाने में कही गई है, तो उसे भी हम सुन लेते हैं। जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का गाना है, प्रतीक जोसेफ की आवाज है, इन्हीं का लिखा हुआ गाना है। संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत हिमेश रेशमिया का, और बड़े दिलचस्प अंदाज में इन्होंने जो है जीवन का फलसफा वो सिखाने की कोशिश की गई है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू की टिक्की के साथ चटपटी इमली की चटनी ऊपर दही से डाल दे, फिर खाने में स्वाद आ जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि व्रत में तो आलू बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उबला आलू और दही का रायता, फ्राई में फिंगर चिप्स, हर हाल में आलू बहुत अच्छा लगता है, समोसे तो आलू के बगैर ही नहीं सकते। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि आज ही मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि आलू टमाटर की रसीली सब्जी बनाना, कहते हैं कि डायबिटीज वालों को लाल आलू खाना चाहिए और उबले हुए आलू को 12 घंटे फ्रिज में रखने के बाद खाना चाहिए, जिसमें से आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि कटक का आलू दम दही बड़ा जिस किसी ने खाया उसे कटक घूमने आने का मजा आया। विश्व प्रसिद्ध आलू दम दही बड़ा के स्वाद सभी मुसाफिर के पेट भरने के लिए ये याद किया जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उनकी फरमाइश होती थी कि फिंगर आलू बनाने हैं, तो सच कह रहे हैं, हम बनाते बनाते थक जाते पर वो सब खाते जाते थे, और तो और एक दो दोस्त भी आ जाते, वो दिन भी क्या दिन थे। आजकल तो मम्मी आलू ज़्यादा नहीं खाने चाहिए ऐसा कहती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू तो हम लोगों के यहाँ पहले भी बोया जाता था और वो अगस्त सितंबर तक सब्जी का पूरा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके कम हो गया है ये। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू भारतीय रसोई की रीढ़ है, इससे यदि इसे सही और संतुलित तरीके से जैसे कि उबाल कर या बेक करके पकाया जाए तो ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए बेहतरीन है। आलू भारतीय रसोई का राजा है जिसके बिना हर घर का भोजन अधूरा माना जाता है। स्वाद, पोषण और उपयोगिता के मामले में भारतीय व्यंजनों में आलू का स्थान सबसे ऊपर है। आलू वाकई स्नैक्स का राजा है, ये इतना वर्सेटाइल है कि इसमें कोई भी लाजवाब डिश मिनटों में बनाई जा सकती है। तो फिलहाल अगला जो हम गीत सुनवा रहे हैं उसमें तो केवल आलू टमाटर का जो साग होता है उसे ही कितने इस तरीके से इसमें हम सुनेंगे इस गाने में कि भूख होती है तब तो वो चीज़ हमें और भी ललचाती है, लेकिन नहीं भी भूख हो तो बोलने का जो अंदाज है इस के बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ आलू टमाटर का साग खा लिया जाए। संगीत किसका है बताइए हमें।

0: उजाला फिल्म का गाना हमने सुना, शंकर जयकिशन का इसमें संगीत है। और ये सही बात है कि जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो सब्जी या कुछ चीज़ बना के ले वो आलू की होती है। आलू की सब्जी और पूरियाँ, या फिर मसाले वाली पूरियाँ, या फिर आलू के पराठे, या इस तरह की चीज़ें हम बना करके ले जाते हैं। या यहाँ तक कि हम जब सफ़र में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो भी सबसे ज्यादा जो सब्जी आपको दिखाई पड़ेगी वो आलू की सब्जी ही होगी। एक साथी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का फरुखाबाद शहर के जो आलू होते हैं वो भारत में नंबर वन तरह के आलू होते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने जमाने और आज तक आलू बैंगन की सब्जी सबसे ज्यादा गुजरात के घरों में खाई जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि ज्यादा खाओगे तो एसिडिटी करेगा। जी हाँ, कोई भी चीज हो उसे अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि छोटे छोटे आलू को जाड़े के दिनों में हर घर में तापने के लिए जो अलाव जलाते हैं उसमें भून कर बच्चे अक्सर कटोरी में नमक उसमें डाल करके खाते हैं। गरम गरम बड़ा टेस्टी होता है। पहले गन्ने की पेराई होती थी तो खोलते कढ़ाई में जब राब तैयार होने को होती थी तो छोटे छोटे आलू को धागे में गूंथ कर कढ़ाई में डाल देते थे। कितना मीठा और टेस्टी वो आलू के लिए जो है हम झगड़ा करते थे। अब तो गाँवों में गन्ने की पेराई बंद हो गई है तो मीठा आलू भी अब नहीं मिलता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल लाल आलू बहुत मिल रहे हैं जिनमें कम मात्रा में स्टार्च होता है और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की भाजी, बैंगन का भरता, बोले जी बोलो तो क्या खाओगे, ये एक इस गाने के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सबसे सस्ता आलू है, जो सभी सब्जियों के भाव ज़्यादा हो जाते हैं तो केवल आलू, धनिया डालकर रसदार सब्जी, चावल और रोटी के साथ खाने का जो मज़ा है वो बड़ा आता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बातें सुनकर हमारी बेटी ने भी फरमाइश कर दी कि अभी तो खाना बन गया है तो डिनर में आज मस्त आलू की रसेदार सब्जी जिसमें डाली हो थोड़ी सी केरी और उसके साथ हो जाए थोड़े से जीरा राइस, ऐसा इन्होंने लिखा। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की बात हो रही तो मुझे चूल्हे की आँच में सेक कर आलू बहुत पसंद आते हैं। जब कभी लंबी यात्रा पर जाता हूँ तो मम्मी हमेशा ही आलू के पराठे और आलू की चटनी ही रखती है जो सूखी रहती है और आसानी से हम ले जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आलू की बातें तो हम कर रहे हैं, उससे चटपटे व्यंजन भी, लेकिन हो सकता है कि हमारे कई साथी हो जिन्हें कुछ मीठी चीज़ें भी पसंद हो, जैसे बर्फी वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी तो उन्हें पसंद आती है। या फिर आलू से भी हम आलू की बर्फी भी बना सकते हैं। कई साथियों ने हमारे लिखा है कि आलू का हलवा बनाया जाता है, आलू की बर्फी भी बनती है। तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं, बर्फी फिल्म का, स्वानंद किरकिरे के बोल, प्रीतम का संगीत है, आवाज़ किसकी है आप बताइए हमें।
1: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

मोहित चौहान की आवाज में ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम सब्जियों का राजा कह सकते हैं, एक ऐसी सब्जी जिसके सहारे हम कोई भी उत्सव मना सकते हैं, कोई भी त्योहार की शान बढ़ा सकते हैं। सब्जियों को खाने में मुंह बिगाड़ने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। गोभी आलू, मटर आलू, परवल आलू, कटहल आलू, टमाटर आलू, किसी भी कॉम्बिनेशन में सुपर हिट है। आलू समोसे में, आलू पराठे में, आलू पकौड़े में आलू। और एक साथी ने हमारी ये लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने आलू के महत्व को समझाने के लिए हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। इस साल की थीम है, जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है। और ये थीम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों को सहारा देने में आलू की भूमिका को रेखांकित करती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि माँ के हाथ के बने आलू के पराठों का स्वाद अब कहाँ मिलेगा, आज आपने माँ की याद दिला दी। और एक साथी लिख रहे हैं कि भंडार में आलू पूड़ी खाने का स्वाद तो खाने वाला ही जानता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मेरी बेटी पूना के एक घर में रहकर पढ़ रही थी, मैं कभी कभार 10-15 दिन के लिए जाती थी। उसकी सहेलियों को बहुत आलू के भरवा पराठे और दही का रायता बनाकर खिलाया था। आए दिन यही फरमाइश उनकी होती थी। चलिए धन्यवाद आपका। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, और देव कोहली के बोल हैं, अनु मलिक का इसमें संगीत है।

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म का ये गाना हमने सुना, और सचमुच जब समोसे की बात आती है तो ज्यादातर उसमें आलू ही डाल करके बनाया जाता है। आलू के बगैर समोसे का मजा हमें तो नहीं आता है। हो सकता है बहुत सारे साथी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखते हों। एक साथी हमारे लिख रहे हैं, उन्होंने आलू बोने का सबसे अच्छा तरीका जो है उसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण लिखा है। पूरा तो हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो ये बात आपके काम की हो सकती है कि उन्होंने लिखा है कि सबसे अच्छा तरीका यह कि खेत में 3-4 बार गहरी जुताई करके और मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना ले। बुआई से पहले बीजों को फफूंद नाशक जैसे कि कार्बेंडाजिम से उपचारित करें और बीज को मेड़ों पर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में रोपे, जहां लाइन से लाइन की दूरी सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी इतने सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण इन्होंने लिखा है जो हो सकता है कि आपके काम का हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक ही इबारत रहती है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं। किसी को इसमें बहुत कुछ अच्छा नजर आता है और किसी को इसमें कुछ बिल्कुल नहीं भाता है। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि अब गिलास पानी से आधा भरा है, इसे आधा भरा कहें या आधा खाली कहें, ये हमारी सोच पर है। वैसे सबसे जो अच्छी बात यह है कि इससे हमें बहुत सारे गानों के बारे में जानकारी मिलती। चलिए अब बात ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने जीवन में वो चीज़ें खाई होती है और हमें अच्छी लगती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आपको आलू नहीं खाना है या मीठा नहीं खाना है या तला हुआ नहीं खाना है, और तब हमारे दिल में एक ही बात आती है कि हाय रे वो दिन क्यों ना आए कि जब आलू की इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बनती। चलिए अनुराधा फिल्म का गाना सुनते हैं।

और अब एक बड़ी सुंदर बात, आलू का रस चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है, ऑलराउंडर है आलू, ये हमारी एक साथी ने बात लिखी है। और इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज की त्रिवेणी में बातें होंगी आशा की, उम्मीद की। आशा क्या है? वैसे तो इसे परिभाषित करना या इसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन आशा को हम तब पहचानते हैं जब हम इसे महसूस करते हैं और जब हमें इसकी जरूरत होती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आशा है अपने लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना और उसे पाने की कोशिश करना। हम सभी के जीवन में आशा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये निराशा से बचाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये एक सकारात्मक भावना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें जीवन का अर्थ, उद्देश्य और धैर्य प्रदान करती है। आशा कठिन समय में मानसिक शक्ति बनकर हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आशा एक भावना है और सोचने का एक तरीका भी। कई बार जब हम हर तरफ से थक हार चुके होते हैं, हमें आशा की कहीं कोई एक किरण कहीं ना कहीं से किसी बाहरी कारण से भी मिलती है, तब हम फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। मुश्किल हालातों से उबरने में आशा की ज्योत जलाए रखना बेहद जरूरी है। आशा को हमें एक इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आशा एक भावना है, एक मानसिकता है, जिसके जरिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन और प्रतिकूल क्यों ना हो, आशा एक विश्वास ही तो है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।

आशा का अर्थ है आगे बढ़ते रहना, हिम्मत बनाए रखना और जीवन के अर्थ के साथ हर मुश्किल से उबरने का रास्ता खोजना। आशा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के बहुत कठिन समय में भी सहारा दे सकती है। यदि हम किसी विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम सकारात्मक निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। कभी कभी हमारे दिलो दिमाग पर भय और निराशा आशा से कहीं अधिक आसानी से हावी हो जाती है। ये डर हमारे आशा के भाव को कमजोर करने लगते हैं। हालांकि हम अक्सर आशा को व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, लेकिन आशा को सामूहिक रूप से भी अनुभव किया जा सकता है। राष्ट्र पर जब कोई संकट का समय आता है, तब आशा और विश्वास का दामन थामे रहना आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आशा हमें भविष्य के लिए बेहतर कल्पना करने और उसे पाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करके जीवन को खूबसूरत बनाए रखती है, जिससे निराशावादी सोच दूर रहती है। आशा

दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते समय यदि मन में आशा हो तो मस्तिष्क अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। आगे बढ़ते रहने की ये इच्छा शक्ति, जिसे हम उम्मीद या आशा कहते हैं, ये जीवन को गति प्रदान करती है। इसीलिए आशा को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। आशा रखने से मन मस्तिष्क बेहतर ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए कि आशा अपने आप नहीं मिलती, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है और इसे बनाए रखने के लिए हमें स्वयं से परे भी जुड़ना पड़ता है। आशा स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली औषधि भी हो सकती है। इसीलिए चाहे हम किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हों या चुनौतियों से जूझ रहे हों, पहले से कहीं अधिक आशा की जरूरत है ताकि हम मजबूती से टिके रह सकें। आशा की एक किरण जीवन की मुश्किलों, असफलताओं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है, जिससे व्यक्ति हार नहीं मानता। आशावादी दृष्टिकोण से जीवन में बदलाव आते हैं और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आशा हमें जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। आशा ही जीवन की वो धुरी है जिस पर सुखद भविष्य की कल्पना टिकी रहती है। ये हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां सुधर सकती हैं और आगे चलकर सब ठीक हो सकता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और

0: अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओमी नावलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावर चंद गहलोत से मिले। स्वेरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3:00 के बजाय 4:00 से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिनाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना बना के देखो ये फिल्म का नाम है। आशा भोंसले और साथियों की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत है रवि का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आजाद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बाजे घुंघरू फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाजों में, शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।
1: लगता है कुछ ऐसा

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत है डी दिलीप का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बनारसी ठग इस फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाते हैं

जिसमें हमारे श्रोताओं ने पत्र लिख करके हमें उस गाने को सुनने की फरमाइश भेजी है। तो पहला जो गीत है ये दिल फिल्म का गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शमसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से। ये पत्र आया है हमारे पास मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अनजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेलहारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस, पायल, श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में है, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी, मीत, शिवांश, अनूप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फतेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो हैं गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

मनचाही गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं की पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाजों में, इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पी जी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी,
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूं।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है, आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूं।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूं।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूं। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूं। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाईकोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का, जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
1: हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी मां ने मुझे पाला पोसा, बड़ किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के दो तीन अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
2: ओह, डॉक्टर रामदास, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर,
3: गुड मॉर्निंग बेनी, गुड मॉर्निंग।
2: कभी तबीयत कैसी है?
3: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं, अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
3: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
2: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
3: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
2: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे।

0: उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या? गिटार। गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
1: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
0: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
1: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
0: अच्छा,
1: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
0: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
2: नमस्ते डॉक्टर।
0: ओ नमस्ते,
1: कहाँ गई थी तुम?
2: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
1: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
0: मेरी पत्नी जी ठहरी, उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
1: हम दोनों के लिए।
2: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
1: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
0: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ, फिर मिलेंगे।
1: अच्छा,
2: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं?
1: इसमें हर्ज क्या है? सच तो यही है ना?
2: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
1: इसमें शर्म का है कि क्या? मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है। देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
2: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें, इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: इधर आओ ना
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। लेट जाओ बेनी, लेट जाओ ना तुम। अरे तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिदी न से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, नहीं मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।
0: ठीक जी।
1: बेनी, एक बात बताओ।
0: पूछो।
1: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
0: बताऊं? दोनों।
1: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
0: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: कलाकार भी
0: हैं? कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
1: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ। तुम बेनी हो ना?
0: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
2: हाँ मैं लॉरेंस हूँ भाई।
0: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
2: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
0: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका
2: और
0: लॉरेंस।
2: मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
0: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
2: तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ?
0: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
2: यही कोई 14 या 15 साल।
0: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में।
2: Exactly.
0: गजब की यादाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेजी।
2: नमस्ते नमस्ते, तो मैं देखते ही समझ गया था
1: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
2: सब वो बातें रहने दीजिए अब। बेनी पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
0: चेस्ट में पेन है।
2: हाँ,
0: दिल की तरफ भी पेन है।
2: वैसे
0: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
1: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
2: हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
1: जी,
2: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
0: डेजी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
2: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
0: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
2: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूं, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
0: बाय।
1: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
0: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
1: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
0: अरे गिरिजा, तुम
1: आप यहाँ?
0: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
1: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
0: जरा शिष्टता से बात करो।
1: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
0: जरा आहिस्ता बोलो।
1: मुझे पहचान लिया आपने?
0: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
1: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
0: तुम ऐसा सोचती हो?
1: सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
0: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
1: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ?
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
1: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती। आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
0: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
1: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक टेरर थे, टेरर।
0: मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है?
1: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
0: तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
1: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
0: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज आज चुप हो जाओ।
1: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
0: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
1: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती, मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
3: मुझे कुछ नहीं कहना है।
0: लेकिन मुझे तो कहना है, कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूं।
3: मैं कुछ

0: सुनना नहीं चाहती।
1: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझाकर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
0: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
1: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
0: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
1: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया। बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
0: अच्छा।
1: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
0: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
1: कितने रुपए खर्च हुए?
0: करीब 600। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
1: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकते हो। डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
0: क्या?
1: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसीलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
0: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
1: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरिजा। मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
2: गिरिजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
3: वो बेनी कहाँ है?
2: चेरिन के पास गए, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
3: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
2: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
3: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है। वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में।
2: डॉक्टर,
3: हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना। मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
2: डॉक्टर, डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
3: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
2: मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
3: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
2: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
3: डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो। बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अरे लो, बेनी आ रहे हैं।
4: आइए आइए, कहां जा रहे हैं?
5: ओह डॉक्टर
4: भाई, जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। इस पैकेट में क्या है?
5: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया?
4: भाई रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
5: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
4: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
5: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कहते हो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
4: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब, सी यू अगेन, बाय।
2: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
1: तुम्हारे लिए एक चीज है।
2: अच्छा देखो तो।
1: लो देख लो।
2: साड़ी ये अब काहे को, और यहां
1: मेरी ओर से प्रेजेंट।
2: प्रेजेंट?
1: हाँ तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
2: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो बेनी? हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
1: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है। तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर साड़ी पसंद आई?
2: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
1: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़ी ना समझ हो, तुम अगर ऐसी ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देख रोने लगी? नहीं नहीं नहीं रो मत। देखो अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो रूठ जाओ। नहीं नहीं ना। अच्छा तो फिर हंस दो। देखो ये ऐसे ऐसे।
2: अरे क्या क्या हुआ आपको?
1: डेज़ी
2: लेट आइए लेट आइए ना। बेनी बेनी बेनी कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा। लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से डर गया।
6: ओह नो।
2: सदा के लिए मुझसे पिछड़ गया।
6: आखिर ये हुआ कैसे?
2: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा। सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। पांच बाद मुझे होश आया। मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
7: डेजी ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
8: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
7: दुख तो मुझे भी है डेजी।

0: मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
1: मैं अब क्यों जीवित हूं गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई, मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
0: ना देवी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे पेड़ी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम तेज तक बैठकर बातें करेंगे।
2: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर मैं और लॉरेंस विवाह सूत्र में बंध गए।
3: अच्छा,
2: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
4: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
5: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
6: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
5: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
7: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
5: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
7: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
5: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
8: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
9: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
8: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं, और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओं चलो एक प्रश्न पूछती हूं। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ, वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चूहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
0: जी,
1: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी,
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है।
0: हाँ।
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ।
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी,
0: हाँ।
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा।
1: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
0: जी,
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो और जो मिर्च खिलाई, अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
0: यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं और गुंजा
1: करती रहूंगी।
0: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी। और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
0: अच्छा।
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
0: जी,
1: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसे ही रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई, मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई
0: अच्छा
1: आपने, तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
0: जी।
1: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया,
0: जी
1: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
0: अरे वाह,
1: हाँ
0: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी? आप अभिनेत्री, आपने अभी बोला कि आपको पता नहीं था कि आप
1: हाँ
0: अभिनेत्री बनेंगी,
1: हाँ
0: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
1: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था,
0: अच्छा
1: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे। कानपुर में मैं थी
0: जी।
1: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी, और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को, और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी
0: अरे
1: स्कूल में
0: वाह,
1: भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना, तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
0: अच्छा,
1: हाँ तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
0: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि साधना
1: हाँ।
0: गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
1: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
0: आह, क्या
1: है ना।
0: खूबसूरत गीत है।
1: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी, और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उस समय आवाज अलग थी मेरी, मतलब
0: जी,
1: आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी।
0: उतनी बुलंद आवाज
1: हाँ
0: थी
1: बुलंद आवाज थी।
0: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब
1: हाँ
0: छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध
1: हाँ
0: भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थीं, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूं कि आपने मंच में नृत्य, अभिनय, बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए
1: हाँ,
0: होंगे।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया,
0: अच्छा
1: वो मेरी बहन करती थी, तो
0: अच्छा
1: मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ,
0: अच्छा
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा
1: अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत
1: तो
0: दुखद घटना है जी।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर
0: नहीं, आप बहुत
1: फिर
0: अच्छा नृत्य की हैं उस जोगीरा में, और हमने देखा
1: जोगीरा
0: बड़ा
1: में
0: अच्छा
1: मार
0: था।
1: खा के की हूं
0: अच्छा, वो किस्सा भी जरा बता
1: नहीं,
0: दें
1: वो ये था बद्री जी थे
0: जी।
1: हमारे डांस डायरेक्टर,
0: जी
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ,
0: हाँ
1: और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी,
0: अच्छा
1: तो मैं तो
0: हाँ
1: नहीं थी, तो उसमें एक स्टेप है ना थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम,
0: जी
1: और घूम के आना था,
0: जी
1: मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये, तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है, तो एक बार आएगा आज तुमको डांस आएगा देखना, लेके डंडा मारा पैर में एकदम ठीक कर दिया मैंने
0: अच्छा, एक
1: आपको
0: डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते हैं
0: लाठी के भूत।
1: लाठी के भूत, मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक
1: और
0: पहुंचाया।
1: क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक मटक के डांस किया उसने, फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। मैं नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई, और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं, कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं, तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे, इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप 1 सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए, वो
1: हाँ,
0: किरदार किया कैसे आपने?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में।
0: अच्छा
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे, तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ, तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया, कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो,
0: अच्छा
1: ये है ये फ्रेम है ये। सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर कैमरे की, तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो डीओपी,
0: डीओपी रहते
1: हाँ, उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो बोलते सीधे नहीं, इतना सा बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
0: अच्छा
1: तो दो तीन चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है,
0: हाँ
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती थी, तो
0: जी
1: वो नेचुरली था अंदर तो आ गया। मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात, एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप
0: अच्छा
1: पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए, तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया, कम हो गया, पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं, मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को, हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है, और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
0: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए, ऐसा आपका कहना है। हाँ। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है, ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
1: एक
0: ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
1: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना,
0: हाँ
1: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
0: जी,
1: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी
0: जी,
1: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता, नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
0: जी,
1: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूं
0: जी,
1: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
0: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
1: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ, ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ। हाँ, कि
0: जी जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो साधना जी हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं, तो मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए।
1: अच्छा, ऐसा
0: जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो
1: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं,
0: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
1: और जी, बहुत जी, मीठा संगीत है,
0: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।

0: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं, और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30, ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा। तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं तो।
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, तो हॉस्पिटलाइज थे। तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे
0: हाँ
1: तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी,
0: जी
1: तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना, तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था, तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी। और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं तो
0: हाँ
1: ह्यूमन टच नहीं रह गया है,
0: जी जी जी
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी थोड़ा सा अच्छा सा रोल था, और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
0: जी
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है,
0: जी
1: तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा।
0: जी
1: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
0: नाइस
1: प्रोडक्शन
0: नाइस
1: में,
0: जी जी
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है, बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
0: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे।
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था,
0: अच्छा
1: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं,
0: जी
1: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी
0: चलिए
1: वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत है
0: आदतन
1: बैठने
0: अनुसार आप लड़कियों से
1: हाँ
0: घिरी रहती
1: तो
0: थी
1: टाइम निकल जाता है, बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी।
0: जी
1: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है, तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहां पे।
0: नहीं
1: हाँ
0: वैसे आप बहुत हॉट हैं, शॉल की
1: हाँ
0: जरूरत नहीं। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के
1: हाँ
0: बाजी
1: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने,
0: जी।
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई हैं उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकरावर्णम फिल्म आई थी,
0: जी
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकरावर्णम। तो
0: ओके
1: जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में,

0: तो विद इन 2 मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं, तो
1: वही सेम
0: उसमें
1: फिल्म.
0: हाँ सेम फिल्म,
1: ओ
0: लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल. मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी. जुड़ना ऐसी फिल्म
1: जी
0: से,
1: जी
0: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहां पे
1: जी बिल्कुल.
0: साउथ में. सरगम ये सब उन्होंने बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा. उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन
1: बोलती आंखें
0: हाँ तो इनको ऑन इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए,
1: जी.
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है. तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया. तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा. नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना
1: जी
0: शायद,
1: जी
0: हाँ
1: जी उसके बाद ही थी.
0: हाँ तो मस्ती में की बस. और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
1: जी.
0: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी,
1: अच्छा
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
1: जी.
0: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ. तो वो फिल्म की उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के दादी बन के चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी.
1: हाँ
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी फिर बच्चों को देखना ये सब,
1: जी.
0: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी,
1: जी जुगनी
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म है
1: बहुत
0: देखे
1: अच्छी
0: हैं.
1: फिल्म जी.
0: तो ये नए नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब,
1: हाँ
0: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है. तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी. तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे,
1: जी
0: लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण.
1: जी
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल,
1: अच्छा.
0: हाँ. तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके. दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है ना, सब मिल के काम कर रहे
1: मिल
0: हैं.
1: के काम कर रहे
0: हाँ
1: हैं, पारिवारिक तरीके
0: हाँ
1: से काम हो
0: हाँ
1: रहा है
0: फिर
1: जी.
0: मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था. उसने कहा रुको रुको ये साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है. तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ. तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत.
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर, वो जब साथ में है
0: हाँ
1: तो आपको क्या अलग लगा पहले का और
0: मुझे
1: अब का?
0: ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था.
1: अच्छा,
0: हाँ क्योंकि ये
1: फ्रीडम.
0: भी बोलते, हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे कि
1: हाँ
0: ऐसा ही करना है. और कई कई जगह तो वो आए पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी.
1: जी. हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे, आपको लेके
0: मेरे
1: जाएगा.
0: पति का नाम
1: आपकी
0: राजकुमार ही
1: जिंदगी में
0: है.
1: ही राजकुमार आ गए. वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे
1: अच्छा,
0: वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके.
1: हम जानना चाहते हैं वो किस्सा.
0: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा अब नहीं करूंगी. तो ये बिहार विहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है, तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम और मिलने आए. तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ, और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने.
1: जी.
0: तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने, इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए. फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू, वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ. तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो. मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जाते, इनको इतना गुस्सा है. बोले शादी करके बताता हूँ इसको, कैसे नाम नहीं याद रहेगा.
1: कराने के लिए शादी कर ली.
0: शादी कर ली, बताइए अब. हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर,
1: हाँ
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे. फिर
1: अच्छा, वही
0: मेरी
1: लड़की हीरोइन चाहिए थी
0: हाँ
1: लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी थी.
0: होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है,
1: हाँ
0: ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी.

0: लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने फिर।
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
0: ये रात भीगी भीगी,

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं, यूपी की भोजपुरी फिल्म है, उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो
1: है,
0: वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो,
0: जी
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे,
0: जी जी
1: सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए।
0: हाँ।
1: तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो
0: जी
1: जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाई वो,
0: जी
1: जो कि ब्लॉकबस्टर,
0: जी
1: आज
0: जी
1: भी
0: जी
1: ब्लॉकबस्टर
0: जी
1: है।
0: जी
1: तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से,
0: जी
1: गंगा जैसन पावन पिरितिया हमार। तो
0: अच्छा
1: उसमें मैंने काम किया
0: जी
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको।
0: इतना
1: बहुत
0: लाइटली तो नहीं
1: बहुत
0: लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी,
0: जी जी
1: लेकिन
0: बहुत प्यारी है,
1: हाँ
0: बहुत
1: वो
0: अच्छी फिल्म
1: हाँ
0: जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन, लाइक जो वहां की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी या सीखने
1: बिल्कुल
0: में
1: भी
0: आपको?
1: नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा
1: हमें अपनी जो बाइयाँ आती थी उन सबसे तो
0: मतलब आप वो चाट और लस्सी
1: वो
0: खाते पीते
1: खाते
0: बड़ी
1: पीते।
0: हुए
1: हाँ
0: हैं जी।
1: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं, सिर्फ
0: अच्छा
1: मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने
0: अच्छा
1: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे, तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे ये
0: सरदार
1: हाँ।
0: खड़े हैं और
1: तो हमारा
0: भोजपुरी बोल रहे
1: पंजाबी
0: हैं।
1: एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी,
0: जी
1: हाँ ये काफी फर्क है।
0: जी
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए, अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या,
0: अच्छा
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ, जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को,

0: कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे।
1: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते ही हैं,
0: जी
1: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे, चंदन चंदन, तो एक
0: हाँ
1: वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी,
0: जी
1: और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था,
0: जी
1: चंदन चंदन ऐसा,
0: बहुत अच्छा।
1: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है गाना।
0: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इस गीत के?
1: हाँ इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
0: रविंद्र जैन वहां पे
1: हाँ
0: उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे,
1: हाँ
0: गाया जा
1: रवि
0: रहा
1: जी,
0: होगा।
1: हाँ
0: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते
1: बहुत
0: समय?
1: अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा अगर आप
0: जी बहुत
1: ये,
0: खूबसूरत गीत
1: हाँ,
0: है।
1: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था, और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे,
0: जी
1: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
0: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है,
1: हाँ
0: तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई
1: हाँ
0: होंगी शायद।
1: हाँ बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी,
0: जी
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ
1: एक साथ
0: बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था,
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो
1: बट
0: में।
1: जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा, तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहां पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह
1: ओहो
0: विराजमान होंगे।
1: भैया, मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ, कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था,
0: हाँ,
1: उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुनाए,
0: 30 गाने, 30 धुनें।
1: गाने में, और सुना रही थी ये पसंद है नहीं है अच्छा, और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो
0: जी
1: बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी, यू नो,
0: जी
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, इतना गुणी, माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे
0: शब्द भी
1: और
0: लिख
1: शब्द भी लिख देते थे
0: लेते
1: 1 सेकंड में,
0: 30 गाने एक समय
1: हाँ
0: पे बना
1: बत्तीस
0: के
1: होंगे
0: सुनाना,
1: 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का, दादा
0: लगातार।
1: कह रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल, शुरू कर दिया, तो
0: और
1: उनसे
0: कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है,
1: हाँ, उसके
0: अद्भुत।
1: बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए
0: हाँ।
1: जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए, तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता,
0: ये रविंद्र जी ने कहा
1: हाँ
0: से जी।
1: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे, और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार,
0: जी, और
1: दादू
0: जब
1: दादू
0: टूर
1: ने,
0: करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो
1: हाँ
0: आनंद ही अलग आता
1: हाँ
0: होगा
1: वो
0: देख
1: तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है,
0: अच्छा
1: तो आई थिंक वो अक्खड़पन में सब कुछ सीख गई,
0: हाँ,
1: अल्लड़पन कहते ना कि
0: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई
1: हाँ ये
0: बचपन से।
1: बात है, मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो,
0: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना,
1: हाँ
0: लगेगी तो
1: लगे,
0: संभाल लेना।
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे ही घूमते
1: नहीं
0: फिरते।
1: नहीं बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, कि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अभी शूटिंग भी करेगी, तो ये
0: हाँ,
1: चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था,
0: अच्छा,
1: नॉट फ्रॉम माई हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें, लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूँ।

0: तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो,
1: अरे वाह,
0: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी। तो
1: हाँ
0: इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने
1: एक
0: बोल
1: बार
0: दिया।
1: में बोल
0: तो
1: दिया
0: मैंने कहा ऐसे ही हवा मत बना के रखो।
1: यानी
0: तो
1: आपको
0: हाँ
1: मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला,
0: हाँ
1: दोनों
0: मेरी
1: जगह
0: सास
1: बढ़िया।
0: ससुर तो बहुत अच्छे थे,
1: जी
0: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहें।
1: जी बिल्कुल। साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का जो आपकी बदमाशियों से परेशान है, पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है
0: नहीं
1: या?
0: नहीं मेरे बेटा तो बहुत दूर है,
1: अच्छा
0: उसको फेमस नहीं होना है, वो
1: जी
0: बिल्कुल ही अलग सोचता है। और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की हैं,
1: जी
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने,
1: जी
0: अनुपम जी ने,
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि
1: हाँ
0: जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
1: हाँ उस
0: तो
1: समय वो चल नहीं
0: फिर वो
1: पाई।
0: उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार आपने हीरोइन किया है, तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है ऑडिशन वगैरह, वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
1: मतलब
0: तो
1: उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता,
0: नहीं मैं करती भी नहीं, क्योंकि
1: मेहनत करो अपनी,
0: हाँ अपनी मेहनत करो।
1: ये बहुत अच्छी बात है, उनको
0: क्योंकि मैंने
1: अपने से
0: अपने लिए
1: नहीं।
0: कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी।
1: जी, लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूं, तो मैं समझ रही हूं कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
0: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
1: अच्छा
0: हाँ तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30,
1: जी
0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई अच्छा तो बोले 100%,
1: हाँ
0: अब देखते हैं क्या होता
1: जी बिल्कुल होगा,
0: है।
1: आपने कह दिया, सोच लिया, और
0: हाँ
1: विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं, ऐसा
0: हाँ ऐसा
1: हम मान
0: है,
1: के चलते हैं।
0: चलिए
1: बिल्कुल, ये
0: ठीक
1: जगह
0: है।
1: बड़ी
0: हाँ
1: बड़े पवित्र लोग यहाँ पर
0: हाँ
1: आए हैं।
0: हाँ
1: आप जानते हैं कि यहाँ पर
0: हाँ
1: अभी आप तस्वीरें देखते हुए
0: हाँ
1: आ रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है
0: अच्छी
1: यहाँ
0: आती
1: की।
0: है। हाँ लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं
1: जी
0: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं ना, बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए हैं लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ।
1: ऊर्जा सकारात्मक
0: हाँ
1: है।
0: वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है।
1: हाँ
0: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में हैं, या मुझे फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊं या मर जाऊं।
1: अरे
0: हाँ मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीज हुई कि
1: समझ
0: मुझे
1: गया,
0: ऐसा
1: समझ
0: लगा
1: गया
0: कि
1: मैं।
0: मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और
1: क्या
0: फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था,
1: बात है।
0: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस
0: थैंक यू।
1: अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है, तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई हैं तो कुछ गाने हम भी
0: मैं
1: सुन
0: एक
1: लें।
0: कोशिश करती हूँ, चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ,
1: आह
0: वो मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है।
1: जी
0: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज से सीखा है, उनका ही गाना गा देती हूँ।
1: जी
0: देखो पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव।

0: अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो क्या उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं।
0: जी
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम
0: ध्यान
1: ये
0: होता
1: ख्याल
0: है।
1: होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी नहीं।
1: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती माएं।
0: जी
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई,
0: जी
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि
0: हाँ
1: आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है,
0: हाँ
1: लेकिन उसको एहसास नहीं है।
0: हाँ
1: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है,
0: अच्छा
1: हाँ, एक कच्चे धागे करके।
0: अच्छा
1: और साड़ियां, वीव्स वगैरह, मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है, ये
0: जी
1: ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी ये पहेली,
0: जी
1: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे

0: बहुत सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है,
1: अरे वाह,
0: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, तो
1: क्या बात
0: मैं
1: है।
0: चाहती हूँ कि ये सब देखें
1: फिल्म है कैसी है पहेली,
0: कैसी है पहले।
1: जरूर से हम
0: हाँ
1: सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है।
0: हाँ
1: और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आए, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
0: अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है, विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
1: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा
0: अच्छा
1: लगता है
0: लगा,
1: विविध भारती में जब आप
0: बिल्कुल,
1: आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है, तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से सफर।
2: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा वाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी युवा दोस्तों को अपने दोस्त अहमद अली का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, युवाणी प्रोग्राम युवाओं के लिए खास प्रोग्राम होता है और आज के प्रोग्राम में होगा आज का खास प्रोग्राम

फ़ोन करें और गीत सुने जिसमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, हम इसकी बात भी करेंगे। उससे पहले करते हैं आज की बात। दोस्तों आज की बात में हम आज बात करते हैं आज के दिवस की। जी हाँ, आज है 30 मई और 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। लगभग 2 शताब्दी पूर्व ब्रिटिश कालीन भारत में, जब तत्कालीन हिंदुस्तान में दूर दूर तक मात्र अंग्रेजी, फारसी, उर्दू और बांग्ला भाषा में अखबार छपते थे, तब देश की राजधानी कलकत्ता में, उस वक्त कलकत्ता देश की राजधानी हुआ करती थी, कानपुर के रहने वाले वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने अंग्रेजों की नाक के नीचे हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की आधारशिला रखी, जिस पर आप सभी ने भव्य भवन खड़े किए हैं। उस आधारशिला का नाम था उदंत मार्तंड, जिसने अंग्रेजों की नाक में इस कदर खुजली कर दी कि उसका प्रकाशन 1.5 वर्ष से अधिक न हो सका। इस साप्ताहिक के प्रकाशक और संपादक आदरणीय शुक्ल जी ने 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित किया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में 30 मई का दिन हिंदी पत्रकारिता का उद्भव माना जाता है और हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं।

0: समाचार टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हिंदी पत्रकारिता दिवस की। तो आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो आज क्योंकि ज़माना डिजिटल हो गया है साथियों, तो हिंदी का उसमें क्या रोल है तो हम आपको बताते हैं। जी, वर्तमान समय डिजिटल संचार का युग है, जैसे कि आपको पता है, जहाँ सूचना का आदान प्रदान कुछ ही क्षणों में संभव हो गया है। इसकी तकनीकी क्रांति ने भाषाओं की दुनिया को भी अत्यधिक प्रभावित किया है। हिंदी जो भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है दोस्तों, अब डिजिटल मंचों पर तेजी से अपना स्थान बना रही है। वर्ष 2022 तक भारत में 75 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हो चुके थे, जिसमें से 40% से अधिक उपयोगकर्ता हिंदी भाषा में कंटेंट खोजना या पढ़ना पसंद करते हैं। ये गूगल की KPMG रिपोर्ट 2017 की बात में कर रहा हूँ, और उसमें बताया गया है कि हिंदी वेबसाइटों, ब्लॉगों, यूट्यूब चैनलों और समाचार पोर्टलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। सोशल मीडिया और हिंदी के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप देखते ही हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इसे एक्स हैंडल अभी कहा जाता है, और व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जैसे प्लेटफॉर्म में हिंदी को अभिव्यक्ति का एक नया मंच दिया है दोस्तों। अब उपभोक्ता जो है वो इंग्लिश का भी प्रयोग करते हैं। हाँ जी, हिंदी और इंग्लिश का जो कंबाइंड कीबोर्ड जो उपलब्ध हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और कई सरकारी संस्थान अब हिंदी में ही ट्वीट और सूचना साझा करते हैं। शिक्षा और डिजिटल माध्यम में जो हम देखें तो ई पाठ्यक्रम, ऑनलाइन वेबिनार, मुक्त विश्वविद्यालय, डिजिटल पुस्तकालय जैसे माध्यमों ने हिंदी शिक्षा को विस्तार दिया है। स्वयं, दीक्षा, ई पाठशाला जैसे पोर्टल हिंदी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी बात हिंदी भाषा और आधुनिक डिजिटल मीडिया के संदर्भ में। तो अब बात करते हैं कि आज है युवानी प्रोग्राम में खास प्रोग्राम, हाँ, जिसका नाम है फ़ोन करें गीत सुने। तो दोस्तों, आज हमें जो ये फ़ोन कॉल्स आपके मिलने शुरू हो गए हैं, तो पहला जो फ़ोन कॉल है उन्होंने फरमाइश की है, नाम उनके हैं अनवर हुसैन और नियाज पेंटर, BR मृदा कॉलेज नागौर से, और लोहार पर नागौर से नियाज पेंटर हैं। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म रखवाला का ये गाना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी

0: जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
1: अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है अलाय गांव से, जिसे भेजने वाले हैं अनूप सिंह राजपूत, और उन्होंने सुनना चाहा है फिल्म राजा और रंक का ये गाना।

जी, व्यापारिक कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं फोन करें गीत सुने हैं। तो इसके अंतर्गत हमारी अगली फरमाइश आई है, मेजर करीम नगर से बहने वाले हैं सादिक हुसैन, और उन्होंने सुनना चाहा है फिल्म लैला मजनू का लता मंगेशकर का गाया ये गाना।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: यह है फोन करें और गीत सुने की अगली फरमाइश जो हमें भेजी है रामनिवास सांगवा ने जाट कॉलोनी नागौर से। आपने सुनना चाहा है अनाड़ी फिल्म का ये गाना।

तो दोस्तों ये था युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम फोन करें और गीत सुनें। तो दोस्तों आज अब घड़ी की सुइयां हमें इजाज़त नहीं दे रही कि आगे हम आपसे बात करें, तो दीजिए अपने दोस्त को युववाणी कार्यक्रम संपन्न करने की इजाज़त। आप सबको एक बार फिर अपने दोस्त अहमद अली का प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी नागौर का चिन्हवी चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं, नीचे सुनिए कार्यक्रम बनिहारी।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

बिना देखो किया कर है कि काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। इरवा से देखो अपने अपना सगला काम समय रहता ही पूरा कर लेना, जीरू एंड टाइम पर अपने भागा दौड़ी नहीं करनी पड़े, और समय रहता सगला संधियोड़ा काम सगला नहीं चोखा लगे। नियमित दिनचर्या में बिना देखो अपना सगला बारे रही काम काज नहीं आवे, नियमित दिनचर्या में अपने घर रहा घरेलू काम सामाजिक पारिवारिक काम भी आया करे। जिया कि बिना देखो घर में भी अड़ा घना ही काम होवे जिन्हें आप अपने टाइम पर पूरा कर ले उन्हों ही चुक होवे। जिया कि आप देखा कि जब आप सुबह बेगा उठा और अगर आप काम काज ही ग्रहणी हाँ तो अपने सुबह टाइम पर घर रो काम काज पूरा कर दफ्तर नौकरी पर भी जानो पड़े। तो इस वास्ते अपने देखो पिछली रात में ही अड़ा काम आधा करण राख लेना, जिया कि देखो दूसरे दिन अगर आपने भी काम ने पूरा करने में सहायता मिल जावे। जिया कि देखो आप सब्जियां एडी जकी कि रात ने कार्टन राख सका हाँ माने कार्टन फ्रिज में ही रख सका, साग सब्जी में डालन वाला मसाला निकाल कर रख सका, लहसुन पत्तेदार सब्जियां ने पहले ही तोड़न साफ करन रख सका है नी। और सुबह देखो बेगो अपने बाने बनावने रहो ही रहे ई तरीका हूँ, और यहाँ ही बना देखो अपना सुबह बेगो उठन रोजीना काम हूँ थोड़ी फुर्सत निकाल व्यायाम भी करना चाहिए, जीरू आप स्वस्थ निरोगी काया पास का। किया करे है कि सुबह 5 बजे री बेगी हवा मन ने तो शीतलता देवे ही है, इरे साथ साथ तन री शीतलता देवन निरोगो बनावे, और सुबह सुबह बेगो हरी घास में नंगा पैर घूमने जावनो अपनी आंखिया री रोशनी भी तेज होवे और रक्त संचारण भी सही बनोड़ो रहे। और इरे साथ साथ देखो अपने दैनिक जीवनचर्या में भी कही है खान पान रो बहुत बड़ो योगदान होया करे अपने स्वास्थ्य ने निरोग रखने में। वो यहाँ की बिना देखो अपने सुबह बेगो उठन तांबारा बर्तन में रखोड़ा पानी रो सेवन करने रक्तचाप हाई लो होवन में बचाव होवे, और सुबह बेगो एक गिलास पानी में नींबू रस डालकर धीरे धीरे सिर्फ जिया पीवनो आपनो बढ़ियोड़ो बारह आयोड़ो पेट भी पतलो पड़ जावे, और पतली छररी कायरो रूप बना देखो अलग ही होया करे है नी। और इन हताया ने साथ साथ ही आपा बहना क्यों नहीं सुन लेवा एक प्यारा सा गीत ने भी है नी, गीत वो भी अपना गुणों ही सुकून दे। तो लो सुनाओ प्यारा सो गीत।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

बेणा देखो मीठो मीठो गीत तो थाने मन ने बहुत दिवायो हुई है नी। तो यहाँ ही बेणा देखो पीला पीला पक्यूड़ा केला रो जद आपा गुच्छो देखा नहीं तो आप अपना जीव ने नहीं रोक पावा और बाना देख कर हर की रोई जीव ही ललचा जावे। और बेणा देखो खड़ा ही डॉक्टर भी केला खामने री सलाह देवे क्योंकि केलो बेणा एड़ो फल है जो कि बच्चा बूढ़ा और जवान सगला नहीं चोखो लगे। और केलो बिना देखो ना केवल अपने स्वास्थ्य वास्ते चोखो है बल्कि इरू अपनी त्वचा बाल और घना ही सारा घरेलू काम में भी आप इन्हें उपयोग ले सका। केलो तनाव ने कम करने में मदद करे क्योंकि केला में ट्राइफ्टोनाइन नाइन नामक एमिनो एसिड होवे जो को कि मूड ने रिलैक्स करे और तनावों पीड़ित बिना केलो जीव ने चोखो महसूस करे। और बिना देखो केलो दांता पर रगड़ने पर चमक आ जावे क्योंकि केला ने दांता ने चमकाने में भी मदद करे और

सुबह ब्रश करने के बाद अगर आप केला रा छिलका ने दांता पर रगन पर केला ने चमक आ जावे। केला न सिर्फ देखो खाने में स्वादिष्ट होवे बल्कि एक चोखो मॉइस्चराइजर भी है। घर पर देखो केला रो फेस पैक बनाने में एक चौथाई पकीड़ो केलो ले उनो और फिर मैं एक चम्मच शहद और आधा चम्मच दही मिला ले उनो। इन्हें चोखी तरह मिक्स करके आपरे चेहरा पर फेस लेप के जिया लगा उनो और लगभग 10-15 मिनट बाद गुनगुना पानी में चेहरा ने धो लेनो। इरो देखो अपनी त्वचा री खोयुड़ी चमक वापस लौट आई। और बिना अगर आप देखो फटी एड़ियाँ भी परेशान हो वहाँ सर्दियाँ में घनी बार देखा पाया बात है नहीं तो इर में भी देखो केलो अपने राहत देश के अपने गर्म गुनगुना पानी ने पैरा ने थोड़ी देर डूबो के रखने के बाद धो लेनो और नारियल का तेल और केला ने मसलन पैरा पर लगाना। थोड़ी देर रखने के बाद पैरा ने धो लेनो जीरू पैरारी चमक तो बनी उड़ी ही रहे और पैरारी दरार भी ठीक होने लग जाए। तो बिना देखो हथाया तो अपनी आगे भी चलती रहेला पर बीरू पहला पास सुनो प्यारो सो गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पणिहारी, ये आकाशवाणी नागौर का सिरमी चैनल है। शाम के 6 बजने को है कुछ पल हम आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और

0: अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम बॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिन्मय चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। यह है फिल्म संगीत की पहली पेशकश। फिल्म का नाम घरौंदा। आवाज़ हैं उपेंद्र सिंह और रूना लैला की।
3: दीवाना।
4: एक दीवाना शहर में।
3: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
4: दो दीवाने शहर में।

यह है फिल्म संगीत की अगली पेशकश। फिल्म का नाम घर आया मेरा परदेसी। आवाज़ हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे, यह आकाशवाणी नागौर का चिमनी चैनल है। शाम के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी के स्वर। यह है कार्यक्रम की पहली पेशकश। आवाज लाखा खां मंगनियार की है।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: माटी का स्वर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी नागौर का सिर्फ चैनल है। कुछ पल में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और उसके पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार इन आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आम जन बीच की धूल भरी आंधी का दौर जारी, सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। वे आज पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जनरल द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, यह अभियान अब भी जारी है। जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान को खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ने वाला एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाना जाना चाहिए। श्री चौहान आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

0: उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गाँव तक पहुँचाना है। केंद्रीय मंत्री ने अभियान के तहत पंचायत स्तर पर मशीनों के वितरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून तक देश भर में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों के साथ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और पारदर्शी तरीके से ही कराए जाते हैं। वे आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन, पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने के साझेदार TCS की तकनीकी खराब के कारण आज कुछ केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 की शुरुआत देरी से हुई। स्वनिधि योजना के पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1 जून से जयपुर में शिविर लगाए जाएंगे। 3 दिन चलने वाले इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों को द्वितीय ऋण की किस्त स्वीकृति और वितरित की जाएगी। ये शिविर जयपुर नगर निगम और एक निजी बैंक के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे। इसे स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके व्यवसाय के विस्तार में मदद मिलती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी बताया है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के महाअधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता में भी नगरपालिका कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। श्री शर्मा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है।
1: मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप वो कड़ी हैं, तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगर पालिकाओं के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने में भी सभी की भागीदारी को आवश्यक बताया। महाधिवेशन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के डीरेगुलेशन फेज 1 के तहत किए जा रहे सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि राज निवेश पोर्टल के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाकर समयबद्ध निस्तारण के प्रयासों से राजस्थान निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। अप्रैल 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज निवेश पोर्टल पर प्राप्त 9000 आवेदनों में से 6000 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है। आवेदनों को मंजूर करने के मामले में राज्य में जयपुर जिला पहले स्थान पर रहा, जहां लगभग 2000 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1300 से अधिक आवेदन स्वीकृत हुए। पुलिस मुख्यालय ने पुलिसिंग में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 123 पुलिस कार्मिकों को महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल देने की घोषणा की है। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, प्रशासन तथा उत्कृष्ट पुलिस सेवा के लिए चयन समिति की अनुशंसा पर इस वर्ष कुल 123 अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया गया है। इनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण HGR सुहास, पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, राहुल प्रकाश, परिस देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक जय यादव, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सिरोही जिले के एक विश्वविद्यालय में योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, योग साधकों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया तथा योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की शपथ ली। नागौर शहर के पास जोधपुर बीकानेर मार्ग पर आज दोपहर एक कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा डुकोसी और राजुवास गांव के पास हुआ। दुर्घटना में कार में सवार 2 महिलाओं और एक बच्चे सहित 4 की मौत हो गई। सभी मृतक जोधपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रदेश में धूल भरी आंधी का दौर आज भी जारी रहा। सीमावर्ती और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आज दोपहर बाद अचानक आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर जिलों में अचानक बदले मौसम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेतीले अंधड़ की शुरुआत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र से हुई, जिसके बाद इसका प्रभाव आसपास के जिलों तक फैल गया। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि दोपहर बाद आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
2: चूरू में आज अचानक मौसम में बदलाव आया है। दोपहर पहले यहां तेज धूप गर्मी का असर रहा, जिससे आम जन जीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। अचानक मौसम बदल गया और आया तेज रफ्तार हवाएं चली, जिस लोगों के टिन सेट उड़ गए हैं। तेज अंधड़ से पेड़ पौधे भी काफी टूटकर नीचे गिर गए। गांव में अच्छी बारिश हुई है, साथ ही चूरू में चने के आकार ओले गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। वहीं तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: प्रदेश में कई स्थानों पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इस दौरान स्थानों पर पेड़ उखड़ गए, बिजली के पोल धराशायी हो गए। राजधानी जयपुर में भी शाम को बादल छाए रहे, सड़क के साथ ही धूल आंधी चली और कहीं कहीं बारिश हुई। कुछ इलाकों में आपूर्ति भी प्रभावित होने की सूचना है। पिछले 2 दिनों से जारी आंधी बारिश से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज करीब 30 से आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं वृष्टि होने के आसार जताए हैं। केंद्र ने आंधी और तेज हवाओं, बिजली चमकने के साथ लोगों को सतर्कता अपने की सलाह दी है। आंधी बारिश का ये दौर अगले दिन जारी रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन विकास कार्यों का पहला चरण किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी चंद ने बताया कि अमृत स्टेशन योजना के तहत भवन नवीनीकरण, प्रवेश और निकास मार्ग पृथक्करण, पार्किंग व्यवस्था, बुकिंग कार्यालय और रिटायरिंग का उन्नयन किया गया है। इस काम में रुपए लागत आई है। और अंत समाचार बार प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कहा सशस्त्र पढ़ने पर सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आम जन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। और प्रदेश में आज दूसरे दिन भी धूल भरी आंधी और जारी। सीमावर्ती रेतीले

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कप्तान खान कलर ने तैयार किया है। जालौर जिले को बीते महीने महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। वहीं गर्मी के बीच मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्रियों ने जिले का दौरा कर आम जन साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों जालौर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिले में रात्रि विश्राम चौपाल लगाई। पंचायत में मंत्री ने ग्रामीणों से संवाद किया। मुख्यमंत्री की सरकार और केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए आम जन से इनका अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं और लाभार्थियों से संवाद कर उनसे सफलता की कहानियों को सुना। उन्होंने गांव का पैदल भ्रमण कर जायजा लिया और लोगों के साथ चाय पीकर चर्चा की। ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार लगातार पर जोगेश्वर गर्ग, नायक छगन सिंह राज और जीवाराम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, कारीगण और बड़ी संख्या में ग्रामीण। जयपुर को दिल्ली से सीधा रेल सेवा से जोड़ने की लंबे समय से चली आ रही जिलेवासियों की मांग बीते दिनों पूरी हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में जालौर से करने वाली दिल्ली भुज एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की। उन्होंने जालौर पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस गाड़ी का जिले के रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनमाल, मोदरान और जालौर में ठहराव होगा। रोजाना चलने वाली इस गाड़ी से जालौर वासी अब जयपुर और दिल्ली से सीधे जुड़ेंगे। वहीं गुजरात के भरूच, अंजार और गांधीधाम तक भी सीधी पहुंच हो सकेगी। गाड़ी की शुरुआत होने से आमजन में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जिले में इन दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। गंगा दशमी के अवसर पर 25 मई से शुरू हुए इस अभियान के दौरान आदर्श अमृत सरोवर बागोड़ा पर श्रमदान रखा गया। जिला स्तरीय आयोजन में प्रभारी मंत्री के विश्नोई शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक मजबूत संकल्प है। अभियान के तहत जिले भर में रोजाना श्रमदान और जागरूकता गतिविधियों के साथ जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। हरियालो राजस्थान के तहत जिले में इस सीजन में 19 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। जिला प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने ये जानकारी देते हुए आम जन से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। श्री विश्नोई ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बागोड़ा स्थित खेतलाजी तालाब पर पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसी सिलसिले में बीते दिनों आहोर में संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। अभियान में पशुपालन विभाग की ओर से जिले के 308 गौशालाओं में स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। जिले के भेटाला में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के तहत तंबाकू और नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। ग्रामीणों को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। जालौर जिले में मतदाताओं द्वारा स्वगणना पोर्टल पर जनगणना जानकारी दर्ज की गई। 1 से 15 मई तक चले स्वगणना अभियान के तहत अब जनगणना कर्मी लोगों के घर घर पहुंचकर सूचना अपडेट कर रहे हैं। मोबाइल ऐप के जरिए आवासों की सूची, सुविधाओं, संपत्तियों और अन्य आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने के साथ ही मकान पर नंबर लिखने का काम किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय परिसर में पिछले दिनों एक दिवसीय प्लेसमेंट शिविर आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और रोजगार विभाग की ओर से लगाए गए इस शिविर में 110 बेरोजगारों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया गया। जिले भर में इन दिनों सूरज अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। बढ़ते तापमान के साथ गर्मी के तीखे तेवर बने रहने से आम जन के साथ पशु पक्षी भी व्याकुल हो रहे हैं। अधिकतम तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने से दिन के समय बाजार और सार्वजनिक स्थान सूने दिखाई दे रहे हैं।

0: जालौर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार।

खास समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो, भारत री फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावन सारू तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल सवारा 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका कर्मचारियों ने सरकार जनता बीच खास कड़ी बताया। और प्रदेश माए आज दूजा दिन धूलो उड़बा सागे आंधी चाली, सरहदी हलका माए रेत रात तूफान और जिंदगी माथे असर पड़ियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो है कि भारत री फौज आला दर्जा री सावचेती राख रही है और जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर शुरू करण बाबत ही तैयार है। वे आज पुणेरा खड़कवासला री राष्ट्रीय रक्षा अकादमी माए 150वां बैच री पासिंग आउट परेड माए बोल रहा है। ये मौके जनरल द्विवेदी कहो कि ऑपरेशन सिंदूर उकसावर और जवाब सटीक और पक्का इरादा सागर देवण रा भारत रा बूतारो दर्शाव कीन्यो है। वह कहो कि वो अभियान हाल ही चाल रियो है। जनरल द्विवेदी पास आउट वेवन वाला कैडेटाओं व्यावसायिकता नेतृत्व और देश सेवा रा आला मानका ने बनाया रखन बाबत कहो। फौज रा मुखिया ई कोर्स ने पास करन वाली महिला कैडेटा री सराहना करता था का कहो कि हिम्मत पक्का इरादा और फौजी बेहतरी बगैर लिंग भेद रो गुण है। अकादमी 353 कैडेट स्नातक री डिग्री हासिल कीनी। इस आगे दोस्ताना रिश्ता वाला देशा रा 21 कैडेटा ने ही डिग्री दी रीजी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेत बचाओ अभियान ने खेता किसाना और गांवा ने जोड़बा रो मोटो अभियान बनावन बाबत कहो है। श्री चौहान आज नई दिल्ली माए खेत बचाओ अभियान री तैयारियां रे बारा माए राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। वह कहो का ई अभियान रो मकसद खाद ने बुद्धिमानी काम लेवन, किसाना ने मौसम उ जुड़ी जानकारियां और राय टेम सर देवन और न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो गांवा री जनता ताई सीधो पुगावनु है। खेत बचाओ अभियान 1-30 जून ताई आखा देश माए चलायो जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए काल समारा 11 बजे विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इनरो प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री रा दफ्तर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल सागे न्यूज ऑन AIR ऐप माथे ही करियो चावेला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहो है कि देश माए चुनाव संविधान चुनावी कानून रे मुजब और साफ कोई सागे कराया जावे है। वह आज नई दिल्ली माए निर्वाचन आयोग री नुमाइंदगी करण वाला वकीलां रा दूजा राष्ट्रीय सम्मेलन माए बोल रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहो के लोकसभा चुनाव रे दौरान साफ गोई जवाबदेही और निपक्ष तरीकाओं वोट देवण तय करण सारू करीब 1,08,00,000 सरकारी कर्मचारी तैनात करया जावे है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE रो पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून नू काम करन लगेला। विद्यार्थियों री परीक्षा री कॉपियां रा सत्यापन और उजू जंचावन री साफ प्रक्रिया तय करण सारू ओ पोर्टल शुरू करियो जा रहे है। जयपुर माए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रा तेत पात्र रेहड़ी पटरी वाला ने कर्ज मुहैया करावन सारू नगर निगम और एक गैर सरकारी बैंक कानियों मेलर 1 जून नू खास शिविर लगाया जावेला। 3 दिन रा आ शिविरा माए पात्र लोगां ने कर्ज री दूजी किस्त दी जावेला। ए समाचार आप आकाशवाणी

0: वाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका माए काम करने वाला ने सरकारी योजनावां री जानकारी जनता ताई पुगावण रा काम माए खास कड़ी बताया है। वह आज जयपुर माए राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन रा महाधिवेशन माए बोल रहा है। मुख्यमंत्री कहो कि स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन री कामयाबी माई नगर पालिका कर्मचारियां रो खास काम रहो है। श्री शर्मा कहो कि स्वच्छ भारत अभियान देश माय साफ सफाई रा काम ने जनता रो आंदोलन बना दीनो है।
1: मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप वो कड़ी हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगर पालिकाओं के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता के समय जुटे रहते हैं।
0: मंत्री विकसित भारत 2000 विकसित राजस्थान 2047 रो संकल्प सांचो करण माए सगना भागीदारी ने जरूरी बताई। कार्यक्रम माए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्राई मौजूद रहा। प्रदेश माए निवेश सारू राज निवेश पोर्टल माथे मिली 9000 अर्जियां मायों 6032 मंजूर कर ली रिजी है। अर्जियां मंजूर करन रकाम माए जयपुर प्रदेश माए अव्वल रहो, जठे मिली करीब 2000 अर्जियां मायों 1332 ने मंजूरी दे रिजी। मुख्य सचिव वेश निवास आ जानकारी दीनी। पुलिस मुख्यालय बेहतर काम करन वाला 123 अहलकारां और कर्मचारियां ने महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल ऊन नवाजन रो ऐलान किन्नो है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा री ओर निकाली जिया हुकम रा मुजब पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक ऊ सिपाही लेवल ताई रा अहलकारां और कर्मचारियां रो मान करियो जावेला। नवाजी जावन वाला अहलकारां माए पुलिस री सिखावन देवन रो काम देख रहा अतिरिक्त महानिदेशक HGR सुहास, पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, राहुल प्रकाश, परिस देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक जय यादव, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह शामिल है। 21 जून ने मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए प्रदेश माए नैरी नैरी ठोड़ा योगाभ्यास रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। आज सिरोही जिला रा एक विश्वविद्यालय माए योगाभ्यास रो कार्यक्रम रखी जियो। इन माए विद्यार्थी, शिक्षक और जनता उमाऊ सागे भाग लीनो और योग ने रोजमर्रा री जिंदगी रो हिस्सो बनावन री सोगन लीनी। नागौर कन जोधपुर बीकानेर गेला माथे आज दोपहर कार रे ट्रक री फेंट माए आ जावनो 4 जना री मौत वेगी। पुलिस रे मुजब डूकोसी और राजूवास गांव बीचे व्या हादसा रे कारण कार माए सवार 2 महिलावां और 1 बच्चा समेत 4 जना री मौत वेगी। अरब मौसम, प्रदेश रा पाकिस्तान री सरहदू लागियोड़ा और उत्तराद आतुणी हलका माए आज दोपहर री पोर जोरदार रेतीलो तूफान आयो। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर जिला माए आए जोरदार आंधियों दिन माए अंधारों महसूस वेवण लाग्यो। रेत रा तूफान री शुरुआत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलाओं भी जो थोड़ी देर माए आरे सारे रा मोटा हलका माए पसर गयो। माणा चूरू खबर नवीस बतायो कि रेत रा तूफान जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो।
2: चूरू में आज अचानक मौसम में बदलाव आया है। दोपहर पहले यहां तेज धूप गर्मी का असर रहा, जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज अंधड़ आया। तेज रफ्तार से हवाएं चली, जिससे लोगों के टिन सेट उड़ गए हैं। तेज अंधड़ से पेड़ पौधे भी काफी टूटकर नीचे गिर गए। गाँव में अच्छी बारिश हुई है, साथ ही चूरू में चने के आकार के ओले गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। वहीं तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। श्रवण शर्मा।

0: आकाशवाणी समाचार चुरू।
1: कई ठोड़ा 60-80 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार हूँ बायरो बाजो जिणो धूलारो गुबार छाजावण रा कारण दूर ताई नजर नहीं आयो। इस दौरान लोगाना दिन में ही गाड़िया ने लाइटा चासनी पड़ी। जोरदार बायरो बाजनों कई थोड़ा रोखड़ा टूट गया और होर्डिंग्स उखड़ गया और बिजली री पूर्ति में थी असर पड़ियो। राजधानी जयपुर में ही सिंजानी पोर बादला मंडी गया, धूलो उड़ियो, आंधी चाली और कठे कठे बारिश हुई। आंधी बारिश हूँ पारो 10 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है। मौसम केंद्र जयपुर प्रदेश में आज करीब 30 जिला सारू आंधी बारिश सागे कठे कठे ओला पड़ बार आसार चताया है। केंद्र आंधी चालन जोरदार बायरो बाजण और बिजली चमकण री बगत सावचेती राखण सारू कहो है। मौसम केंद्र रे मुजब आंधी बारिश रो सिलसिलो आवता 3-4 दिन ताई चालतो रहवण री संभावना है। श्री गंगानगर जिला रा सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावन रा काम रो पहलो दौर पूरो फेंक्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन बतायो के अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत स्टेशन भवन ने बेहतर बनावन, स्टेशन में दाखिल वेवन और बाहर जावन रा न्यारा न्यारा दरूजा बनावन, गाड़ियां उबी करण री नूवी व्यवस्था विकसित करण समेत कई खास काम करी ज्या जामाथे करीब 20 करोड़ रुपया रो खर्चो आयो। इस आगे वठे करीब 10 करोड़ रुपया रा खर्चो 12 मीटर चौड़ो पैदल पुल बनायो जा रियो है और सूरज री रोशनी 50 किलोवाट बिजली पैदा करण री मशीनाई लगाई जा रही है। आखिर माय खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो भारत री फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावन सारू तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल सवेरा 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका कर्मचारियों ने सरकार और जनता बीच खास कड़ी बताया। और प्रदेश में आज दूजा दिन ही धूलो उड़वा सागे आंधी चाली, सरहदी हलका में रेत रा तूफान जिंदगी माथे असर पड़ियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने सगला किसान भाया ने बाया ने और नैना नैना टाबरा ने आपरे राकेश भाई रा गणा हेतु कोडू राम राम। भाया आज हमारे साथ है ओम भाई राम राम।
2: राम राम राकेश भाई, आपने भी घना घना राम राम। और राकेश भाई देखा कि चौपाल पर आया नहीं भी हूँ पहली आज मोबाइल हो जे में गातड़ो और मोबाइल गणगणाई
1: गणगणाई मैं खुद ही हो चो मैं क्यों आज हो क्यों कही एक हाथ ही बाजिया
2: एक हाथ ही बाजिया।
1: हाँ
2: और मन यहाँ लगे कि आम पर जगह किसान भाई है नहीं जगह का नहीं मोबाइल है।
1: हाँ
2: आज जरूरी कौन है कि वो मोटड़ू ही हुए अगर छोटी क्यों मोबाइल होने जकरे भी भाई जो है
1: वो मैसेज सगड़ा नहीं आए
2: मैसेज आयो है मैसेज देखो कि ये खातर आयो है कि आम पर जकी टेक्नोलॉजी है नहीं आम पर क्या संचार माध्यम वो कितो यान अगंती है जो पहली बता
1: रही बटे यान
2: को आंधी रूड़ो आवेलो यहाँ आवेलो मतलब सावचेत करने
1: की है ताकि कटे आपा हाथों कटे ओटा में उब जावा या पांगा जी का ढाव डांडा है प्याने छोकी जगह बांधा ताकि बट कोई पेड़ एड़ मात नहीं पड़ जावे और टाबर टिंगर है ब्याने हगड़ा ने घर के मायने रखा
2: जी हूँ तरो। पर राकेश भाई और सब ज्यादा फायदों की दे ठान ध्यान है आम पर किसान भाई
1: सही बात है
2: यहाँ दे कि आम पर किसान भाई ने पहले ही बता दे कि वो मौसम यहाँ को है और भी मौसम के अनुसार जान आंधी आ रही है कि बीकानेर में अपन समाचार मिल गया अभी बीकानेर आंधी अटाई नहीं जितना पर किसान भाई है ना जगह एकदम तैयार हो जो को भी नुकसान होने की चीज अभी ने काफी कम कर सके
1: कम कर दे बचा सके
2: मतलब वो एक है जो किसान के वास्ते फायदे को सोता।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर।
0: किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो आप बातचीत करिए अब एक जैविक खेती के आवश्यक तकनीक का। बीरमाइन एक सिंचाई प्रबंधन भी है ओम भाई। बीरमाइन है जिसको ज्ञान आप बूंद बूंद सिंचाई है, फवारा सिंचाई है या वर्षा जल संचयन और ज्ञान की जल बचत तकनीका को उपयोग करा तो भी आप है जिसको जैविक खेती ने बढ़ावो दे सका। इन अलावा जैविक विविधता यानी कि खेत के मायने विभिन्न प्रकार की फसल आप उगार है जिसको पारिस्थितिक तंत्र ने बढ़ावा मिले और कीट और बीमारियां ने नियंत्रण आप कर सका। इसके अलावा भी है जिको के प्राकृतिक नियंत्रण है यानी कि प्राकृतिक शिकारियों और जैविक नियंत्रण और जैविक निरोधकों का आपा जिको प्रयोग कर सका। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण है यानी कि जैविक खेती है जिका पर्यावरण ने जिको नुकसान नहीं हुए जिका आपा जान मिट्टी पानी हवा और स्वस्थ रखने वास्ते जिका मदद करे ब्यांक आपा संरक्षण करनो छे। और फसल योजना जल वायु मिट्टी का प्रकार और स्थानीय बाजार की मांग के आधार पर आपा जे फसल को चयन करा तो भी आपा ने जिको मुनाफो हुए। इसके अलावा और का है
4: इसके अलावा आप बात करा तो फसलों का जो अवशेष को उपयोग किया गया आप पर देखो बड़े रहा जगह तो देखो कि अभी जान नई नई तकनीकी आ गई नई नई बाजार के महीने दवाइयों एकदम जब यहाँ पर धान खरीदा बीज खरीदा वो एकदम रेडी उपरो रहा है।
3: सही बात है।
4: पहली बडेरा कहीं करता कि चौको धान होनी जो खेती करता भी चौके धान एक के बड़े टाल परा और बिने राख रे महीने जब यहाँ पर कहवा पानी बोबर हाँ बीक महीने मिला और पूरो डाड़ देता और बीर महीने अगले साल तक कोई जिनो जान कुछ ही कौन पड़ता
3: सही बात है।
4: गुण पड़ना है हिली पड़नी बे पड़ता ही कौन है तो वो भी यहाँ पर फसल अवशेष है जो आप बढ़िया देख रो वो भी यहाँ करना चाहिए और जे उर्वरक रो आपा उपयोग करा तो बिल्कुल कहना ही कहीं क्योंकि आपा इर माता जैविक खेती माता पर जोर भी काफी दे दिया और जैविक खेती की माता आपारी जकी सरकार है नी भाभी अबार फुल जोर दे रही है कि जैविक खेती अपनाओ और सरकार साथ साथ जैविक खेती रहते कहीं कहवे अभी कहवे की मोटो धान जितो हो सके वो उगाओ।
3: सही बात है।
4: मोटे धान रो
3: सही बात है। मिलेट्स कहवे भी आपा ने देखो के फायदो है खाउन में भी और बेचण में भी है और आज देखो के मुंबई में है जिको अपने अयूब गोरी जी डेरी व्यवसाय करे ब्यांको जिकी हते करी बा भाईते करा पूगती
4: जरूर
3: लो सुनो।
5: देखो एक भाई मिलिया है ए देखो के टोपी लगाड़ी मूछा काली गड़ा में गम छोर ए भैंसिया के कन बैठा है ब्यांको गदा तावड़ी राम राम सा
6: राम राम सा राम राम सा
5: काई नाम है सर किसो गांव है सा
6: मारो नाम अयूब गोरी है सा नागौर गांव है।
5: अच्छा नागौरी है।
6: हाँ नागौरी है भैंसा को टपेलो है गाया भी है भैंसा भी है।
5: अयूब जी आपके है जी को कितनी गाय है और कितनी भैंसिया है
6: आप सर 90-95 भैंसा है छोटा मोटा भी फाटा पड़िया है 10-12 गाय है टोकड़ा है।
5: तो आप है जी को किसी नस्ल की भैंसिया है अगली एक ही है कि अलग अलग
6: है मोरा नस्ल की भी है अपन राजस्थान की भी है गुजरात नस्ल की भी है घनेकर मोरा नस्ल है
5: ज्यादा मोरा नस्ल है आप दूध है जी को किसी नस्ल को है जी को छोको हुए और ज्यादा
6: मोरा नस्ल को दूध वो तो होगा
5: एक टाइम को कितो दूध देवे मुरा
6: क्योंकि भैंस हुए ना नस्ल वाली है तो 8-9 किला दूध देते 8 किला का एवरेज आवे टाइम को और को 8 दोनों टाइम 15-16 किला देते
5: 15-16 किलो है
6: खुलोन मत यहाँ तो मुड़ा को अपन मारवाड़ी भैंस को पत्तो फेट दो
5: फेट बत्तो
6: भैंस को अपन राजस्थान भेज ले फेट बत्तो आवे।
5: अच्छा
6: मुर्रा भी जब राजस्थान भेज दो वो फेड़ मत तो आया करे।
5: अयूब जी आप अंग है वो तबेला को काम करता कितो टाइम हो गयो
6: आप तो देखो साहब भारत बाप दादा को ही काम है
5: पितृक धंधो है ना
6: पितृक धंधो है जरा काम कोई काम अपने छोटे मोटे खेती बाड़ी है
5: तो पता है आप सब भाई वही काम करो तबेला
6: कोई काम है सर दो भाई है दोनों कोई काम है
5: वही काम है हाँ अयूब जी अपंग है जी को कहते बताइयो कि भाई गायें भी है तो गायें किसी नस्ल की है सगली एक है कि अलग अलग है
6: ये गायें है ना वो जो दो चार अपन देसी गाय है लाल पंजा होलिस्टीन जर्सी
5: तो होलिस्टीन जर्सी पचे देसी गाय या दूध तो होलिस्टीन को अगड़ू बत्तो होगी
6: हाँ होलिस्टीन को बत्तो हो फेर तो कम हो होलिस्टीन को दूध बत्तो हो
5: बाकी तो देवे एक टाइम को दूध
6: होलिस्टीन तो यहाँ है होलिस्टीन तो टाइम को देते है दस बारह किलो दूध
5: दस बारह किलो
6: दोनों टाइम चौबीस पच्चीस किलो
5: और जर्सी
6: जर्सी लगभग गाय गिरे वो लगभग गाय है किलो दो किलो कम देसी फर्क पड़े और वो लगभग ही देवे दो
5: और देसी
6: देसी गाय को तो पांच को खान पान हो तो पांच छह किलो टाइम होते
5: तो पचे आप बतायो कि भाई दूध को पचे इतना दूध को गायों को और भैंसों को अलग अलग रखोगे
6: सबको अलग अलग है भाव ऐसा
5: का भाव बिके भैंस को और गाय को
6: भैंस को दूध अपने तबेल बिके छियासी रूपए
5: छियासी
6: और गाय को दूध बेचो पचपन रूपए
5: पचपन पचे आपके तबेला में आ जावे कि आप
6: नहीं नहीं नहीं कट ले जा ले जाओ जरूर नहीं है सब लोकल ग्राहक है तबेला में आवर ले जावे
5: तो पचे आप कितनी भैंसिया बार दूध है पचे
6: टाइम
5: को कितना दूध हो जावे
6: आबार अपन का जो दूध सा 70 रुपए दूध आड़े है भाई दोनों टाइम को 700 750 लीटर दूध है बेचा को भाई दो सौ सवा दो सौ लीटर है गाय को
5: तो सब टापांगे तबेले आ रही ले जावे
6: तबेले आ रही ले जावे अपन को बारे ले जाओ उनको जरूरत है
5: अयूब जी एक बात पूछूं ध्यान आप बताओ कि भाई ये इतनी दूजे तो पचे थाने काई ध्यान पड़े कि भाई आ है जिको के गाय है या भैंस है इन्हें ब्याह नहीं तो टाइम हो गयो कि यहाँ की कोई डायरी राखोड़ी है
6: पूरो इसलिए पूरी डालनी पड़े साहब डायरी में एंट्री हो कितनी तारीख का और किस समय नाम की साल आई है क्या फड़ी है दो तीन महीनों हाथ गाल तपास खाली होगी फिर पाची फुलावा तो नस्ल वालों पांडो रहा सांड रहेगा
5: तो आप किस किस नस्ल का सांड है और पाडा है
6: पाडा पाडा कहेंगे आप बुरा नस्ल का है
5: बुरा नस्ल का है कृत्रिम गर्भाधान भी कराओगे आप
6: हाँ कटिंग हर तीन महीनों एक बार कटिंग कराओ सब भेजाएंगे
5: नहीं कृत्रिम गर्भाधान कहूँ क्यों सुइयों भराओगे
6: कृत्रिम गर्भाधान कराओगे कृत्रिम गर्भाधान मैं तो कम ही कराओ साहब मांगे खुद का पाडा है
5: हाँ हाँ सही बात है
6: तीन चार पाडा है जब आप हमें इतनी नौबत हो कृत्रिम गर्भाधान
5: सही बात है और युग जी एक और बात पूछूं कि ध्यान कुआड़ में पच थे काई काई देवो भाई भैंस आपा के ब्याह वजन पच ब्यान काई काई देवो खाउन पीउन में
6: ब्याह वजन या रेगुलर में
5: नहीं ध्यान ब्याह या पच महीनो दो महीनो हुआ देवा नहीं कि भाई दूध छोको
6: हुए
5: हाँ और रेगुलर में काई देवो भाई सब बताओ थोड़ा
6: सुहाग ध्यान है एक दो दिन बाद गुड़ है असाड़ी है
5: कितना दिन देवो
6: आने देवा साहब कंटिन्यू करे
5: छह दिन
6: हाँ कंटिन्यू देवा मतलब एक एक जानवर में हर चीज दो दो किलो पेट में पूछ
5: देवा
6: आइटम देवा फिर बाद में कोई पंत देवा खल है छुरी है चापड़ है सोयाबीन है मक्की है पांच चार तरह की छुरे है सब मिक्स कर एक किलो एक टाइम को मतलब पांच किलो किलम तो बंटो वो मिला
5: बंटो दे दो ध्यान अब आर गर्मी पड़ रही है और आज तो देखो कि आंधी भी कितनी आई है पीली काली आंधी आई है तो आंधी और गर्मी के माय हाँ बरसात की छांटा भी हो रही है तो आंधी में अपने गर्मी तेज पड़े जन इमान थे पचे काई देवो गाय ने

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की यह पहली पेशकश, फिल्म का नाम घर, आवाज लता मंगेशकर की है।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी नागौर का चरमी चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का फरमाइश फोन इन कार्यक्रम। हेलो फरमाइश।

0: दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके पसंदीदा गानों को हेलो फरमाइश के कुछ सुनहरे पलों के साथ। जी हाँ, आप और हम हैं चिरमी चैनल के साथ। दोस्तों किसी ने कमाल की बात कही है कि सपनों के लिए कभी अपनों से दूर ना होना, क्योंकि अपनों के बिना सपनों का कोई मोल नहीं। जी दोस्तों, ये सही बात है कि सपने अपनों से ही बनते हैं। दोस्तों अब आपको इंतजार होगा आपको अपने फरमाइशी गानों का, तो देखते हैं कौन है हमारे आज के हेलो फरमाइश के पहले कॉलर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: डूंगर राम जी कर रहे हैं सर जी।
0: डूंगर राम जी बात कर रहे हैं सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: डीडिया से।
0: डीडिया से। आपका गांव नागौर से कितना दूर है डूंगर राम जी?
1: 24-25 किलोमीटर सर जी।
0: रेडियो साफ सुनाई देता है आपको? रेडियो कैसे सुनते हैं आप, मोबाइल से या फिर रेडियो लगा रखा है आपने?
1: सर जी मोबाइल से सुनते हैं।
0: डूंगराम जी क्या काम करते हैं आप?
1: हम बकरी चराते हैं साहब।
0: भेड़ बकरियां चराते हैं आप?
1: हाँ।
0: गर्मी कितनी है आपके गांव में अभी?
1: बहुत है
0: डूंगराम जी। रेडियो में कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: हेलो फरमाइश, और बात
0: जी,
1: युगवाणी
0: जी,
1: ज्ञानवाणी,
0: सभी कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: हाँ सभी सुनते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है।
0: आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: सर जी वो एक

0: हेलो, फरमाइश।
1: हाँ साहब,
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: मैं इंद्रचंद सांकला बोलूँ, राठौड़ी
0: इंद्रचंद जी सांखला, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप?
1: गुआ नागौर।
0: सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या करते हैं इंद्रचंद जी आप?
1: मैं तो कम तो करा,
0: जी, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है आपने
1: पढ़ाई तो 10वीं पास की है। रेडियो
0: इंद्रचंद जी? फिर रेडियो सुनने का वक्त मिल जाता है आपको?
1: तो प्रोग्राम तो वो जोरदार लागे, एको लागे, एक वो काकाड़ो लागे।
0: जी, रेडियो कैसे सुनते हैं आप, मोबाइल से या फिर रेडियो लगा रखा है
1: नहीं
0: आपने?
1: नहीं रेडियो है, मैं तो पूरे रेडियो सुना।
0: जी, हेलो फरमाइश, कैसा लगता है? जी जी जी इंद्रचंद जी, अभी गर्मी बहुत बढ़ गई, फिर काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती आपको?
1: दिक्कत तो सब आती है, पर क्या करें, सुबह 6 बजे आती है।

0: हैं, 2 बजे छुट्टी कर लेते हैं।
1: सुबह जल्दी आते हैं और जल्दी छुट्टी कर लेते हैं ना।
0: हाँ
1: बहुत अच्छी बात है। बताइए क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
0: दोस्त का नाम लेंगे साहब, धर्माराम मेघवाल, रामेश्वर जी बडली आला, हुक्मी चंद जिताऊ सर का
1: जी,
0: पापालाल जिताऊ सर, वो चिट्ठी है, नाम फिल्म का गाना है ना, चिट्ठी आई है।
1: जी जी बहुत ही प्यारा गीत है जी, हम सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार जी। जी,
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: मैं मनोहर लाल गांधी, विजयनगर चाणक्य चौक, गाजियाबाद से बोल रहा था
0: मनोहर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, बताइए अपने बारे में।
1: जी। धन्यवाद आकाशवाणी नागौर के सभी से और सभी एंकर को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। सर, अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: जी, मैं तो संगीत से जुड़ा रहता हूँ। पिछले 50 वर्षों से संगीत ही मेरा साथी है
0: जी
1: और वैसे मेरी कपड़े की शॉप है और यही मैं

0: रेडियो सुनता रहता हूँ जी,
1: यानी दुकान में रेडियो चलता रहता है आपके?
0: ऐप के थ्रू हिंदुस्तान के जितने भी चैनल हैं सब आते हैं हमारे पास, तो सभी सुनते हैं, जिसमें आकाशवाणी नागौर बहुत ही अच्छा चैनल है।
1: जी मनोहरलाल जी, मौसम कैसा है गाजियाबाद का भी?
0: मौसम तो गर्म हवाएं हैं, लू चल रहा है, बड़ा ही खैर गर्मी तो हर साल ही पड़ता है जी।
1: जी, मनोहर जी क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
0: फिल्म का नाम है 20 1962 की फिल्म है, गीत
1: जी
0: के बोल हैं, जरा नजरों से कह दो जी निशा चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी, ये सुना दी
1: जी सर, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: जरा नजरों से कह दो जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: भैया। योगेश डांगरे मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप क्या करते हैं सर?
1: काम हमारा खेती बाड़ी का है भैया।
0: पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है सर आपने?
1: पढ़ाई में भैया एमए है मेरा भूगोल और हिंदी साहित्य में।
0: अभी खेतों में क्या क्या बो रखा है?
1: अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है भैया, गेहूं कटाई के बाद से खेत मतलब अभी खाली है और अभी जोताई वगैरह थोड़ा बराबर कर रहे हैं खेतों को आगामी फसल के लिए।
0: जी, मौसम कैसा है अभी गांव का?
1: मौसम बहुत गर्म है भैया,
0: गर्मी सभी जगह है अभी जी। हेलो फरमाइश, कैसा लगता है आपको?
1: बहुत अच्छा लगता है। फिल्म
0: योगी जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: बॉबी से सुनवा देंगे, मैं शायर तो नहीं।
0: बहुत ही प्यारा गीत है, हम सुनवा रहे आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर। धन्यवाद
0: परमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए सर, अपने
1: सर।
0: बारे में, अपने बारे में बताइए सर।
1: जी सर, हम खेती किसानी करते हैं और एक सीहोर जिले के छोटे से गांव में रहते हैं सर। और हमारे इधर अभी बहुत गर्मी पड़ रही है सर, करीबन 44-45 डिग्री गर्मी हो जाती है दिन में सर।
0: जी, सीहोर से बहुत बड़े हमारे पंडित जी हैं, प्रदीप जी मिश्रा
1: प्रदीप मिश्रा जी कथावाचक, शिव
0: जी।
1: महापुराण की कथा कहते हैं सर। वो बहुत माने हुए गुरु जी हैं और अच्छे प्रवचन भी देते हैं सर।
0: जी, सुना है कभी उनको?
1: जी मैं तो सुनता रहता हूँ, मेरे तो पास में ही है सर। उनका जो धाम है वो 24 किलोमीटर

0: दूर है मेरे गांव से सर।
1: क्या बात है सर। सर रेडियो कैसे सुनते हैं फिर आप इतनी दूर से बात
0: सर
1: करें?
0: मैं मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनता हूँ आपको सर।
1: जी हेलो फरमाइश, कैसा लगता है आपको?
0: मुझे तो बेहद पसंद है सर, काफी दिनों से आपके कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ और जब अंतराल ज्यादा हो जाता है जब मैं रिकॉर्डिंग करवा देता हूँ सर।
1: क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
0: सर फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है और गाने के बोल है तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने। सभी दोस्तों को डेलिकेट रहेगा सर, आपको भी डेलिकेट रहेगा।
1: ठीक है सर, हम सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

से और शनिवार को रात्रि 8 बजे से किया जाता है। दोस्तों, हमारे आज के हेलो फरमाइश में आज हमारे साथ है तकनीकी सहयोग दिया सीमा गोस्वामी ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। दोस्तों, हमारे उन श्रोताओं से निवेदन है जिन्होंने आज हमें कॉल किया, कृपया वो हमें 2 महीने के बाद कॉल करें जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिल सके। दोस्तों, अब लेते हैं आपसे विदा, लेकिन हम और आप मिलेंगे हमारे अगले हेलो फरमाइश में। दीजिए हमें आज्ञा, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। ये सुनिए लोक गीतों का कार्यक्रम चिरमी, और ये है कार्यक्रम की पहली पेशकश। आवाज़ें हैं एस पूजा, सोनिका, ममता, दीपाली, धीरेंद्र और बाबू सिंह की।

यह है चिरमी की अगली पेशकश। आवाज़ें हैं इस पूजा सोनिका ममता दीपाली धीरेंद्र और बाबू सिंह की।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम चिरमे FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे। और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है

0: वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र

0: बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बई तुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 175,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: एफ एम में 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चर्मी चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए दर्द भरे गीत। और यह है पहली पेशकश, फिल्म का नाम लैला मजनू, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

ये गाना अभी आपने सुना, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम आप आए बाहर आई, और यह है फिल्म संगीत की अगली पेशकश। आवाज़ मुकेश की है, फिल्म का नाम संजोग।

मुकेश गाये फिल्म संजोग के गीत के साथ ही दर्द भरे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरम चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब से लेकर रात्रि के 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: ज्वेल थे, फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

रंगोली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के सभी श्रोताओं को दिलीप का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर।

की हौसला अफजाई के लिए जोश ऑफ इंडिया गीत में भी उन्होंने गाया। उन्होंने संगीत में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। कीके का कहना था कि गायक का चेहरा दिखने के बजाय उसका सुना जाना ज्यादा जरूरी है।

23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले लगभग 3,500 जिंगल्स के लिए आवाज दी। क्रिकेट विश्व कप 1999 के दौरान भारतीय टीम

ये गीत काफी लोकप्रिय रहा। हालांकि बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से। उनके गीतों से युवा अपने आप को रिलेट कर पाते थे, क्योंकि उनके गीतों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी महसूस कर पाते थे और भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते थे, जैसे कि ये गाना उन्हीं के लिए गाया गया हो। तड़प

1999 में उन्होंने अपना एक एल्बम लॉन्च किया पल, जिसका गीत यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है काफी लोकप्रिय रहा और स्कूल कॉलेज के लगभग हर फेयरवेल फंक्शंस का हिस्सा रहता था। इस गाने के बगैर कोई भी फेयरवेल फंक्शन अधूरा ही माना जाता था।

केके के चर्चित गानों की बात करें, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना आंखों में तेरी काफी लोकप्रिय हुए। काइट्स का जिंदगी दो पल की, जन्नत का गाना जरा सा, गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है।

उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया और उन्हें बचना ए हसीनो फिल्म के गाने खुदा जाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का स्क्रीन अवार्ड मिला।

केके बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म भी करते थे और नेचर लवर भी थे। केके के कुछ अपने उसूल भी थे जिनसे वो समझौता नहीं करते थे। एक बार एक गाने को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें लगा कि गीत के बोल ठीक नहीं हैं और उनकी इस आपत्ति का सम्मान करते हुए गाने के बोल बदल दिए गए। अच्छे गायक की उनकी अपनी परिभाषा थी। केके मानते थे कि अच्छा सिंगर वही है जो किसी संगीतकार के गाने को अपना बना के गा सके।

0: संगीतकार ललित पंडित ने कृष्ण कुमार कुन्नाथ के लिए अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
1: के को पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी बहुत प्यार करती है, बहुत ही अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत दोस्त थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में, लाइफ में कभी कभी, और शोबिज मुकेश भट्ट जी की फिल्म में गाने गाए हैं, उन्होंने सारे मेरे जतिन ललित के भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज में एक यूथ को अट्रैक्ट करने की एक क्षमता थी, और गाने में जो सुर पकड़ने की ताकत थी उनमें बहुत थी। और सबसे बड़ी बात है, जो सिंगर में लोग ढूंढते हैं और जो कुदरत की तरफ से आती है, वो एक वॉइस क्वालिटी। उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही यूथफुल वॉइस क्वालिटी थी। और वॉइस क्वालिटी का ऐसा होता है कि एज से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, वॉइस पुरानी नहीं होती आपकी, आपकी गायकी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, और वो केके में थी।
2: ओ

के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बने, जिसके लिए वो खास तौर से जाने जाते थे। युवा दिलों की धड़कन बने और अपने आखिरी पलों में भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो युवाओं के साथ ही थे। 53 वर्ष की अवस्था में मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में कॉलेज के कॉन्सर्ट के बाद हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए।

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर। आलेख और स्वर दिलीप का, संपादन और प्रस्तुति तेजस्वी कांबले की।
1: आज के फनकार।

छाएगी प्रोग्राम थोड़ी ही देर में।

FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:51 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:51 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दी